0: मातृवंदना के पश्चात अब लीजिए सुनिए सुरेश वाटकर की आवाज में ये भजन।
1: आंखों में करुणा, हृदय में ममता का सागर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि साईं बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ वापस लौटा हो। साईं ने सबकी मुरादें पूरी की हैं, वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, बाबा के दरबार में सबने ही अपना मन वांछित फल पाया है।

0: श्रोताओं अंतिम शब्द लीजिए, सुनिए भाई साहिब डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह जी की आवाज में।
1: सर्ब तार सर्ब के नायक सुख समूह के दाते जाचक

0: श्रोताओं, भाई साहिब डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह जी के गाए इस शब्द के साथ ही प्रभाती वंदना कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब सुनिए एग्री टिप्स कार्यक्रम।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है सुपारी के बागान में कीट व्याधि नियंत्रण। हमारे इन द्वीपों में अक्सर किसान भाइयों के पास सुपारी के बागान हैं। किसान भाई सुपारी के बागानों की देखभाल भी करते हैं क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक तौर पर मुनाफा होता है। सुपारी में भी फसल सुरक्षा के उपाय करने चाहिए क्योंकि अन्य फसलों की ही तरह सुपारी में भी कई प्रकार के कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप होता है। सुपारी में लगने वाले कीड़े और बीमारियों के प्रति अगर हम सजग रहें और समय पर इनका नियंत्रण करें तो निश्चित तौर पर अपना उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। साथियों, सुपारी में लगने वाले कीड़ों में शॉर्ट होल बोरर सबसे प्रमुख कीड़ा है। ये कीड़ा सुपारी के बागानों में एक गंभीर समस्या है। इन कीड़ों का आक्रमण प्रायः पुराने तनों पर ही होता है। इन कीड़ों के जो वयस्क होते हैं वे कड़े पंखों वाले भृंग होते हैं जो कि पौधों में सुरंगें बनाकर हानि पहुंचाते हैं। ये कीड़े सुरंग बनाकर पौधों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। इस प्रकार से शॉर्ट होल बोरर का जब तीव्र रूप से सुपारी के पौधों में प्रकोप होता है तो सुपारी के जो प्रभावित पौधे हैं वे मरने लगते हैं। शॉर्ट होल बोरर के बाद सुपारी को नुकसान राइनोसरस भृंग से भी होता है। राइनोसरस भृंग, जिसे हम गैंडा कीड़ा कहते हैं, जिसको कि अक्सर हम नारियल के बागानों में देख सकते हैं, इसका प्रकोप सुपारी के बागानों में भी होता है। इस कीड़े की वयस्क अवस्था सुपारी की पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इसके प्रकोप के कारण सुपारी की पत्तियां लीफ एक्सिल यानी अपने जो निकलने वाले सिरे होते हैं वहीं से सूख कर गिरने लगती है। इन दोनों कीड़ों के अतिरिक्त सुपारी में मिलीबग का भी प्रकोप होता है। मिलीबग के जो शिशु व वयस्क अवस्थाएं होती हैं ये सुपारी के पत्तों को

0: नुकसान पहुंचाती हैं। ये जो कीड़े होते हैं, ये पत्तों का रस चूसकर हानि करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि पत्तों को किसी भी प्रकार का नुकसान होने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और इसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। साथियों, शॉर्ट होल बोरर कीड़े के नियंत्रण हेतु पौधे के ग्रसित भाग में आप मिथाइल पैराथियन और बालू की पुताई कर सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बनता है उसको आप डाल सकते हैं। इसी प्रकार राइनोसरस भृंग से सुपारी के वृक्षों को बचाने के लिए आप वृक्षों के ऊपरी सिरे पर यानी क्राउन वाले भाग पर मिथाइल पैराथियन और बालू के मिश्रण को भर दें। मिलीबग कीड़ों का प्रकोप होने पर पौधों में आप मेलाथियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए आप 0.1% मेलाथियन का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक सुपारी के बागानों में बीमारियों का सवाल है तो हमारे यहां पर कोई खास बीमारी नहीं देखी गई है, लेकिन फिर भी आप अपने बागानों की लगातार निगरानी करते रहें। जैसे ही आपको किसी प्रकार की बीमारी होने का अंदेशा हो या बताए गए कीड़ों का प्रकोप आप बागान में देखें तो तुरंत पौध रक्षा विशेषज्ञों से सलाह ले लें और उनकी बताई गई बातों को ध्यान में रखकर सुपारी के बागान में पौध सुरक्षा के उपाय करें।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना एग्रीटिप्स कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था।

0: भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in

वापस लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा जलयान की वापसी आज ही दोपहर 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

0: एमवी रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी उसी दिन सवेरे 8:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप स्वराजद्वीप स्टेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन 28 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से छूटकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा तथा जलयान की वापसी उसी दिन दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार दोस्तों, इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज का विषय है जमाना। दोस्तों, ये जमाना हर रोज नए रंग दिखाता है, कभी हंसाता है तो कभी कुछ सिखा जाता है। लेकिन जो लोग हर हालत में मुस्कुराना जानते हैं, वही जमाने की भीड़ में अपनी अलग पहचान बना पाते हैं।

ले मान ले मेरी बात, सारा जमाना हसीन।

दोस्तों, ज़माना चाहे कुछ भी कहे, प्यार की अपनी ही एक ज़ुबान होती है। ये ना वक्त देखता है, ना फासले और ना ही ज़माने के बनाए हुए नियम। जहाँ एहसास सच्चे होते हैं, वहाँ प्यार हर ज़माने से बड़ा नज़र आता है।

दोस्तों, ज़माना चाहे कितना ही बदल जाए, कुछ भी बातें कभी पुरानी नहीं होती। अपनों का साथ, दिल की सच्चाई और यादों की मिठास, ज़माने के साथ चलना ज़रूरी है, लेकिन अपनी पहचान को संभाल कर रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वक्त और ज़माना बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और अच्छी सोच हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 281वीं कड़ी।

रात्रि की निस्तब्धता में रावण के महलों में सीता की खोज करते हुए हनुमान उन्हें तो कहीं नहीं पाते, किंतु एक स्थान पर पूजा के लिए निर्मित हरिमंदिर तथा तुलसी के पौधों का समूह देखकर उन्हें परम आश्चर्य होता है। जगे हुए विभीषण के मुख से प्रभु नाम का उच्चारण सुनकर उनका आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। ब्राह्मण वेशधारी को अपने सम्मुख पाकर आदर सत्कार के बाद विभीषण का प्रश्न है, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं या स्वयं श्री राम हैं जो मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? राक्षसों की नगरी में एक संत और राम भक्त? पवनसुत चकित होकर विभीषण की कथा सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 281वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक थे ए हरिहरन और श्रीकांत पारगांवकर, और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब लीजिए, सुनिए संवेद स्वरों में देशगान।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी और आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर यानी 7 सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 7:05। पर सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत सवेरे 7:30 पर सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। सुगम संगीतीय कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे चंदन दास, मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह। तराने सुहाने कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीतीय कार्यक्रम में आप प्रभा आत्रे का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनेंगे। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर सुनिए निकोबारी कार्यक्रम। दोपहर 12:00 सुनिए तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम सुनिए 12:30 पर। 1:10 पर महफिले कवाली कार्यक्रम में सुनिए जाहिद नाजा कवाल को। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम आप सुनेंगे 1:30 पर। दो बजकर 30 पर मौसम की जानकारी के साथ साथ हमारी पहली सभा समाप्त होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे प्राइमरी चैनल पर शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम के साथ। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:00 श्री धीरेन्द्र नाथ मधु से की गई बातचीत का विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान। 6:30 पर समाचार तरंगिनी। 6:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुनवाया जाएगा।

6:55 पर सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। प्रादेशिक समाचार सुनिए 7:05 पर। 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। 7:20 पर फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में। 7:30 पर युवानी के तहत सुनिए हेलो फ्रेंड्स फोन इन प्रोग्राम। रात 8 बजे सुनिए चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार के बाद कुछ देश गान आप सुन पाएंगे रात 8:30 पर। और रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं, जबकि रात 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर करंट अफेयर्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और रात्रि 10:30 पर मौसम की जानकारी के साथ सभा की समाप्ति होगी। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: वृत्ताः भविष्यन्ति येन देशे सर्वत्र मादकद्रव्यव्यापारस्य मादकद्रव्यस्य दुरुपयोगस्य च निवारणार्थं प्रयत्नानां समीक्षायाः सुदृढीकरणञ्च भविष्यति। अस्मिन् अवसरे श्रीशाहः मादकद्रव्यनियन्त्रणविषयम् अग्रिमकार्ययोजनाप्रतिवेदनञ्च विमोचयिष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अवदत् यत् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापारसन्धिः वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः समर्थनाय बलगुणकस्य कार्यं करिष्यति। ह्यः लन्दननगरे भारत वैश्विक मञ्चस्य यूके भारत सप्ताहं सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् युनाइटेड किंगडम्स देशेन सह कृत मुक्त व्यापार सन्धिः अद्यावधि भारतस्य सर्वाधिक व्यापक सन्धिः वर्तते। अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके आयोजितायाः नीट यूजी पुनः परीक्षायाः अस्थायी उत्तरकुञ्जीनां दर्शनार्थं प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं च राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः गवाक्षम् उद्घाटितं वर्तते। एनटीए इत्यनेन घोषितं यत् उत्तरकुञ्जिका www.neet.nta.in इत्यत्र उपलभ्यते। छात्राः अस्य मासस्य 28 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रतिप्रश्नं 200 रूप्यकशुल्कं दत्त्वा प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि आह्वानं स्वीकृतं भवति तर्हि एतत् शुल्कं पूर्णतया प्रतिदेयं वर्तते। सर्वकारेण औद्योगिक व्यापारिक द्रव अनिल इन्धनस्य आपूर्तिविषये सर्वाणि क्षेत्रीय प्रतिबन्धनानि दूरीकृत्य पश्चिम एशिया संकटात् पूर्वं प्रचलितस्तरं यावत् आपूर्तिं पुनः स्थापितं वर्तते। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः जॉर्ज रोड्रिगेज़ः घोषितवान् यत् द्वयोः शक्तिशाली भूकम्पयोः मध्ये मृतानां संख्या 88+100 अभवत्। सहस्रशः जनाः घातिताः, 200+ जनाः अद्यापि भूकम्पग्रस्ते प्रदेशे एव परिलग्नाः सन्ति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। जन सूचनाएं इसके अंतर्गत पहले सुनिए मौसम। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के इलाकों में 9.9 मिलीमीटर वर्षा हुई। सापेक्ष आर्द्रता 95 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:58 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:46।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विभिन्न विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहे यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे तक श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है, जबकि यात्री विमान संख्या 2336 दिन के 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि अब से कुछ ही देर यानी 7:05 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सात बजकर 7:15 पर सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे चंदन दास, मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह। तराने सुहाने कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 9:00।

9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप प्रभा आत्रे का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनेंगे। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10 बजे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
2: नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक मिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
3: नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पर्यटन विभाग की ओर से आज से 3 दिवसीय मानसून कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस आज मनाया जा रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के तहत परिवहन विभाग की ओर से द्वीप समूह में सघन प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा और जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से कैमल बे के लिए MV नालंदा की अतिरिक्त यात्रा की व्यवस्था की गई है। सुबह के समाचारों के साथ मैं अनामिका सेनगुप्ता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विश्वभर के पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग, अन्य संबद्ध विभागों, स्वयं सहायता समूहों, राज्य सांस्कृतिक संघों और अन्य हितधारकों के सहयोग से आज से मानसून कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्निवल के हिस्से के रूप में प्रदर्शनी मैदान में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक मानसून फूड एंड स्पाइस फेस्ट आयोजित किया जाएगा। वहीं कार्बनस्कोप तट पर आज और कल सुबह 9 बजे से बीच स्पोर्ट्स फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ITF मैदान में कुल 25 स्टॉल लगाए गए हैं। बीच वॉलीबॉल मैच आज सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा इंडोर गेम्स, नाटक, बैंड प्रस्तुति और स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी ने द्वीपवासियों को अपने संदेश में एक नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासों का संकल्प लिया है। इस वर्ष का विषय चक्र को तोड़े, संगठित अपराध को रोके है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन न केवल जीवन और परिवारों को नष्ट करता है, बल्कि संगठित अपराध को भी बढ़ावा देता है, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है और समाज की प्रगति में बाधा डालता है। उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों, विशेषकर युवाओं से NMBA प्रतिज्ञा लेकर और नशामुक्त मित्र बनकर नशामुक्त भारत अभियान का समर्थन करने की अपील की है।

दक्षिण अंडमान पुलिस की ओर से नागरिकों को नशीले पदार्थों के खतरे के बारे में जानकारी देने और एक सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नशा विरोधी जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में दक्षिण अंडमान पुलिस ने पूरे जिले में जागरूकता कार्यक्रमों, रैलियों और खेल गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की। इसी क्रम में हम्फ्रीगंज थाना पुलिस ने कल हम्फ्रीगंज जंक्शन से धनिकड़ी जंक्शन तक 6 किलोमीटर लंबी युवा जागरूकता मैराथन का आयोजन किया। इस दौर में युवाओं, आम जनता और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। प्रशासन ने लोगों से नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट मानस हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन या व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करने की अपील की है। उधर इस दिवस के अवसर पर मध्योत्तर अंडमान जिले में भी जागरूकता कार्यक्रमों, रैलियों, वॉकाथॉन, प्रशिक्षण सत्रों और सामुदायिक गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। NTA ने पुनर्परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए शुल्क वापसी हेतु अपने बैंक खाते के विवरण की पुष्टि और उसे अद्यतन करने के लिए भी एक पोर्टल खोला है। बैंक विवरण इसी महीने की 30 तारीख तक अद्यतन किया जा सकता है। कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित एक महीने की थिएटर कार्यशाला का कल उद्घाटन किया गया। अंडमान क्लब में कला एवं संस्कृति सचिव ज्योति कुमारी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि थिएटर एक शक्तिशाली माध्यम है जो समाज, समकालीन वास्तविकताओं और मानवीय भावनाओं को संवेदनशील तरीके से दर्शाता है। जो लोग इस कार्यशाला में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे आज दोपहर 2:45 पर अंडमान क्लब में आकर मौके पर ही अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, प्रवर्तन अभियान और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात अनुशासन को सुव्यवस्थित करने के प्रयास के तहत परिवहन विभाग की ओर से आने वाले हफ्तों में पूरे द्वीप समूह में सघन प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के तहत संचालित इस चेकिंग का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वाहन मालिकों के पास वैध और अपडेटेड दस्तावेज हो। सभी दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाली सवारियों को स्वीकृत सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसी तरह चार पहिया वाहनों में बैठे सभी यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है। वाहन चलाने वालों को गति सीमाओं का पालन करने और शराब पीकर वाहन न चलाने को कहा गया है। विभाग ने परिवहन ऑपरेटरों और वाहन चालकों से इन नियमित सत्यापन अभ्यासों के दौरान पूरा सहयोग, धैर्य और शिष्टाचार बनाए रखने की अनुरोध किया है। द्वीप समूह की दक्षिणी द्वीप समूह की यात्रा के लिए जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से ननकौड़ी होते हुए कैंबल बे के लिए जहाज MV नालंदा की अतिरिक्त यात्रा की व्यवस्था की गई है। यह जहाज 1 जुलाई को सुबह 9 बजे हेडो जट्टी से रवाना होगा और 3 जुलाई को सुबह 8 बजे कैंबल बे से ननकौड़ी होते हुए वापस श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। इस यात्रा के टिकट आज सुबह 9 बजे से जारी किए जाएंगे। यात्री विभाग के ई टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। पोर्टल से सीधे जुड़ने

एक QR कोड भी उपलब्ध है। इसके अलावा यात्री कल सुबह 9 बजे से स्टार्स टिकटिंग काउंटर से भी टिकट खरीद सकते हैं। उधर दंडस पॉइंट और चाथम के बीच चलने वाले व्हीकल फेरी के समय में संशोधन किया गया है। संशोधित सारणी के अनुसार दंडस पॉइंट से सुबह 9 बजे संचालित होने वाला व्हीकल फेरी अब 9:10 पर छूटेगा। इसके अलावा शाम 3:20 और 7:35 पर, जबकि चाथम से दोपहर 2:50 तथा शाम 7:15 पर जलयान उपलब्ध रहेगा। शेष सभी व्हीकल फेरी का समय सारणी पहले की तरह ही अपरिवर्तित रहेगा। यह संशोधन 1 जुलाई से लागू होगी। प्रशासन के मैट्रिक स्तर के पदों के लिए ई रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवार मैट्रिक स्तर और हायर सेकेंडरी स्तर के पद के लिए अब 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद एक सुधार विंडो खोली जाएगी। सुधार विंडो की तिथियों की घोषणा प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। चिन्मय मिशन स्वास्थ्य होमियो क्लिनिक के सहयोग से 28 जून को जागरूकता सह निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन करने जा रहा है। शिविर सुबह 10 बजे से चिन्मय मिशन सभागार में आयोजित होगा। शिविर का संचालन डॉ. स्मृति दास करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यटन विभाग की ओर से आज से 3 दिवसीय मॉनसून कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस आज मनाया जा रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के तहत परिवहन विभाग की ओर से द्वीप समूह में सघन प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा और जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से कैंबल बे के लिए MV नालंदा की अतिरिक्त यात्रा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागिनी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना देश सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि अनेक रंगों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक डोर में बांधने वाली पहचान है। यहीं की मिट्टी में अपनापन है, यहीं की हवा में सुकून है और यहीं का हर कोना हमें गर्व से कहने का हौसला देता है कि हम हिंदुस्तानी हैं।

अपना देश हमें सिर्फ रहने की जगह नहीं देता, बल्कि जीने की पहचान भी देता है। इसकी परंपरा, इसकी एकता और इसके लोग ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस मिट्टी से जुड़ा हर रिश्ता दिल को गर्व से भर देता है।

जब बात अपने देश की होती है तो दिल खुद ही इज्जत और प्यार से भर जाता है। ये वो धरती है जहाँ हर कदम पर इतिहास है, हर चेहरे पर अपनापन है और हर दिल में अपने वतन के लिए बेइंतहा मोहब्बत है।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं रॉकस्टार फिल्म का ये गीत। धुन बनाया है A.R. रहमान ने और गाया है जावेद अली, A.R. रहमान और मोहित चौहान ने।

सोनू निगम के स्वर में आइए सुनते हैं कल हो ना हो फिल्म का ये गीत, रचना जावेद अख्तर की और धुन शंकर एहसान लॉय का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। धुन बनाया है शरीफ तोशी ने और फिल्म का नाम है हमारी अधूरी कहानी।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का

दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज़ डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या

0: पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपए शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
3: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार

0: पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बढ़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड क्वीन मैक्सिमा ऑफ नेदरलैंड्स डिस्कस इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड रेवोल्यूशन। गवर्नमेंट रिस्टोर्स commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप चंदन दास, मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह के आवाज़ों में कुछ गज़लें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सफ़र से, किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। अगला गीत जगजीत सिंह की आवाज़ में अर्थ फिल्म से, रचनाकार है कैफी आज़मी और संगीतकार है जगजीत सिंह।

0: HIV/AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
2: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
1: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
2: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
1: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
2: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
1: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
2: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
1: अब हम कर सकते हैं।
2: अब हमें करना होगा
1: मलेरिया को मिलकर।

0: कतराना होगा।
1: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
0: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए फिल्म रजिया सुल्तान का गीत। गीत रचना जानिसार अख्तर की और संगीत दिया है खयाम ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम तराने सुहाने अब यही समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
2: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
5: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
4: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
5: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
4: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
5: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
4: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
5: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
4: अब हम कर सकते हैं।
5: अब हमें करना होगा।
4: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
5: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
4: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए प्रभा आत्रे का हिंदुस्तानी शैली में गायन। इनके साथ तबले पर है मुकुंदराज देव, हारमोनियम पर आनंद राणे और तानपुरा पर रागनी चक्रवर्ती और छाया साकरे ने संगति की है। तो लीजिए पहले सुनिए इनका राग देसी, जो विलंबित एक ताल पर निबद्ध है।

0: श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप प्रभा आत्रे का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन रहे थे।
1: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। अब सुनिए दिल्ली से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण बाजपाई VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण बाजपाई VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं, तीन एस्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी, मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूँ एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज़्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स 3 सन्स ऑफ माई पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज़्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेज, इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज NCC कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लेयर्ड फॉर, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन क्लेयर्ड फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज, और फिर IMA ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन्ड इन टा जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है, जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। तो वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा।
0: ओके, मतलब पूरा वो।
1: हाँ, तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली JNK का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में।
0: ओके,
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफ़ी टाइम कटा एंड देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहाँ से एक एकेडमिकली ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई।
0: यानी कि जो एकेडमिक आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस
1: वो वापस घूम फिर के
0: आया। लेकिन सर जिस तरह

0: आपकी शुरुआती जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि
1: जी
0: जम्मू
1: जी
0: कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए, वो
1: बिल्कुल
0: कैसा था?
1: बिल्कुल। मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहाँ पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है।
0: अच्छा
1: तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते रहे।
0: अच्छा
1: जी, तो डिफिकल्ट, इट इज़ इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से।
0: अच्छा
1: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में। तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट टेन्योर।
0: ओके
1: यस,
0: तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी, देर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफ़ी टाइम रहने के बाद जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है
0: जी
1: तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशंस में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं,
0: सिचुएशन में
1: तो
0: बिल्कुल।
1: एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत हम किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीज़ें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती हैं कुछ टाइम के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं।
0: जी
1: ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज वो चीज़ एक थोड़ा सा
0: अलग
1: उसकी
0: लेवल
1: अलग
0: की।
1: सैंक्टिटी होती है, बट हाँ,
0: जी
1: फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज़ अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस,
0: ओके
1: बड़ा ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 01123421085, 2342108 5।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफ़ी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी,
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहाँ पे आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहाँ पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे हमने सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहाँ पे।
0: अच्छा।
1: तो एक बार एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया।
0: साथ में लेकर
1: शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अफसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल विच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस, उन्हीं की वो टेबल तक आई। बट इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल्स स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं, और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमई भी जा रही हैं।
0: अच्छा।
1: ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो, और पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
1: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वाज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहाँ पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
0: अच्छा।
1: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे

0: बच्चों को उन क्लास छठे में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल
1: जी
0: अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि
1: बिल्कुल
0: घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में लाके उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे
1: जी
0: अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे
1: मतलब
0: है।
1: पूरा लाइफ
0: तो
1: स्टाइल आप
0: जी, तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को स्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल, तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं।
1: ठीक है
0: फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन और सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे,
1: जी
0: एंड आई टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि
1: अच्छा
0: झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसिस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना
1: अच्छा
0: सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा
0: जी
1: गर्म
0: जी
1: इलाका है,
0: जी
1: तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो
0: जी
1: ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा
0: जी
1: कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ,
0: जी
1: तो क्या
0: जी
1: वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों तो बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई थी
0: एक बड़ी
1: वो।
0: टीम हो गई, द इंटायर ऑब्जेक्टिव वॉज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे
1: जी
0: सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में। टू
1: बिल्कुल
0: इनकलकेट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बींग ना, वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं,
1: अच्छा
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पर गई थी। तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे जाके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है, और
0: जी
1: वो फल फूल रहा है, सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना,
0: जी
1: वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे, और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ
1: अच्छा
0: साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैनेज पर 25 एकड़ से के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को
1: जी
0: शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले दे के आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं।
1: बस
0: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट, आपके
1: ओके
0: आँख कान नाक सब कुछ होते हैं। तो इन्हीं से ही सारा काम कराना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना, कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती से रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके,
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा के
1: एक
0: लिए।
1: बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा? कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां लगा कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं साहब, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी, बहुत क्लियर थी कि ये
1: करना
0: एक
1: है
0: टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो जो तैयार हुआ है ये आगे से, देखिए हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीज़ें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक,
1: हमेशा के लिए वो
0: हमेशा
1: बन
0: के
1: गया, और वो
0: लिए।
1: हमेशा ही वहां से एक नए बच्चे निकल करके
0: जी
1: आते
0: जी
1: रहेंगे।
0: जी जी
1: तो ये
0: जी
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
0: मैं बिल्कुल आप बात मैं मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सेटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का। और क्योंकि एक ऐसी चीज़ थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद, बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे
0: जी
1: जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको VSM से सम्मानित किया गया,
0: जी
1: तो वो जो मोमेंट था?
0: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से अपने दम से किया पूरा का पूरा।
1: जी
0: हाँ, बस ये था कि तीन तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने
1: जी
0: इसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ए ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
1: सर, ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था।
0: जी
1: आपकी फैमिली

0: आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक एक एक अलग सी चीज है,
1: जी
0: बड़ा
1: जी
0: इंटरेस्टिंग रहा हो, तो वो बताइए हमें।
1: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है। तो
0: जी
1: अपने आप में बस सबसे सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड
0: बिल्कुल
1: दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो
0: बिल्कुल
1: अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज़ से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
0: बिल्कुल
1: जी
0: सर, एक चीज़ यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
1: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
0: ठीक है,
1: जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या पाँचवें में
0: ओके
1: हैं,
0: जी,
1: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन।
0: ओके
1: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है, उसमें अपनी अपनी चॉइस भर दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
0: अच्छा
1: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य
0: जी,
1: में अप्लाई करें तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं
0: ओके
1: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती हैं, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो
0: जी
1: ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहाँ पर दाखिला होता है। पर
0: जी
1: ये बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं,
0: जी
1: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की भावना
0: डिसिप्लिन,
1: डाली जाती है, ये
0: बिल्कुल
1: जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर अगर
0: बिल्कुल,
1: वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग
0: या
1: महत्वाकांक्षाएं हो
0: जी
1: सकती हैं,
0: करियर को लेकर
1: चॉइस हो
0: के,
1: सकती हैं,
0: जी
1: पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
0: यानी
1: जाता
0: कि
1: है।
0: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो
1: जी
0: मजबूत हो जाते
1: बिल्कुल
0: हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही
1: बिल्कुल
0: ऑर्गेनाइज हो जाता
1: यस
0: है।
1: यस
0: तो सर,
1: यस
0: इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या कोई और प्रोसीजर है?
1: यस यस अगर गूगल करेंगे तो सैनिक स्कूल एडमिशन्स की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल
0: ठीक है
1: सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है
0: ठीक
1: जिसपे
0: है
1: कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
0: ओके तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर
1: जी
0: सामने आ
1: जी
0: जाएगा
1: जी
0: उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो 5वीं पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे, वो या
1: या जो
0: जो
1: पास आउट हो चुके
0: हो
1: हैं,
0: चुके हैं,
1: हाँ,
0: वो
1: 12 साल की लिमिट होती है,
0: 12 साल की
1: तो दस
0: लिमिट
1: से
0: है।
1: 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
0: हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी, और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स हम देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हैट टू देम माय सेल्फ। अंजलि लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहाँ पे एज अ रजिस्ट्रार माय रोल वाज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन, और प्लस डे टू डे एकेडमिक

0: मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
1: ओके
0: तो
1: सर,
0: आई
1: ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एक एकेडमिक्स में आकर के उन चीजों को
0: एब्सोल्युटली
1: संभालना।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम ए इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड, से एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो
1: जी
0: उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी मेडिसिन
1: जी
0: साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में
1: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी
0: जी।
1: वो।
0: बट हाँ, 3 साल 4 साल हो गए वहाँ पे। इन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रमेंडस, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और बहुत चीज़ों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी वहाँ पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है,
1: ओके
0: एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में।
1: ओके
0: और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
1: अच्छा
0: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा, ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी करी काफ़ी
1: जी
0: करी,
1: जी
0: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहाँ पे लाने में, तो उसमें काफ़ी योगदान किया गया।
1: जी तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
0: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है, जो लखनऊ वाला पीजीआई है दैट इज़ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट,
1: ठीक है
0: एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट
1: जी
0: एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडीज भी हैं जो कि
1: ओके
0: सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग
1: अच्छा
0: एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं,
1: जी
0: जहाँ पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री,
1: जी
0: ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
1: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
0: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी होता है,
1: अच्छा
0: सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब
1: ओके
0: संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहाँ पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं,
1: सर,
0: जहाँ
1: अगर हम एक लेमेन के हिसाब से समझें या
0: जी
1: आम
0: जी जी
1: आम भाषा के हिसाब से,
0: जी
1: तो उसको कैसे हम इसको
0: जी
1: समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो जो ये बता रहे हैं आप इनको?
0: संस्थान में जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है, कि
1: अच्छा
0: जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए,
1: ओके
0: जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई,
1: अच्छा, मतलब जो
0: ट्रीटमेंट्स हो
1: बहुत
0: गए,
1: ही सेंसिटिव
0: यस
1: या बहुत ही
0: यस
1: गंभीर
0: जेनेटिक
1: वाले।
0: ट्रीटमेंट्स हो गए, तो
1: अच्छा
0: इनका भी एक हायर लेवल होता है, उसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे
1: अच्छा
0: किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीज़ों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं वहाँ पे, डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं,
1: जी
0: एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
1: ओके
0: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये यह है कि भाई जो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे,
1: जी
0: उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा।
1: सर, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे
0: जी
1: बातचीत करते
0: जी
1: हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में आए होंगे,
0: जी
1: ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इनका
0: जी
1: इतने हाईली सेंसिटिव
0: जी
1: जो
0: जी
1: ट्रीटमेंट्स आपने बताए
0: जी
1: उनको और बेहतर से
0: देखिए सर,
1: बेहतर बनाना।
0: दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वॉज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माई ओन डिस्पोजल।
1: जी
0: यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, केपेबिलिटीज और अलग अलग
1: अपने अपने
0: इन्वायरमेंट से
1: काम
0: आती है,
1: कर रही है
0: तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना और उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो
1: जी,
0: अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है,
1: बिल्कुल
0: ज़्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहाँ पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे, जंगल में एक तरीके
1: अच्छा
0: से, जहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ पे, जहाँ फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे। तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द
1: जी
0: फैक्ट इज कि यस, बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज वॉट कीप्स मी गोइंग।
1: जी
0: जी
1: तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी एक ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
0: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट
1: जी
0: टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू,
1: एग्जैक्टली
0: तो भाई टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान

0: संवेदनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
1: तो बिल्कुल वो
0: जी
1: जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते
0: फिर
1: हैं।
0: आगे बढ़ते हैं।
1: सर
0: बिल्कुल
1: इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग, एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
0: जी। देखिए नर्सिंग कॉलेज एक नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की। अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे।
1: ठीक
0: डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी
1: बिल्कुल
0: करनी है, बट उसके
1: जी
0: बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेज को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, पर उसके
1: जी
0: अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया,
1: जी
0: और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहाँ पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहाँ पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92, एंड
1: ओके
0: पीजीआई वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए और बताइए कैसे साहब कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो
1: तो
0: ये
1: ये
0: अपने
1: भी
0: आप में
1: बहुत बड़ा अपने आप
0: जी
1: में
0: जी
1: अचीवमेंट
0: जी
1: था,
0: जी
1: और जाहिर है ये बहुत टफ भी रहा होगा, तो
0: हाँ,
1: इसमें इसमें फिर किस तरीके का आपको।
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट
1: जी
0: हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और
1: जी
0: जो जिस चीज़ के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है। तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट, एंड इट इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से, मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको
0: जी
1: करना,
0: जी
1: तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा
0: यस
1: होगा।
0: रिस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीज़ों से आप लैग कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज़ हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीज़ों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं,
1: जी
0: जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस कराएं,
1: ठीक ठीक
0: और
1: ठीक
0: कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें। दैट इज वेरी वेरी
1: तो
0: इंपॉर्टेंट।
1: ये जितनी भी चीज़ें रही हैं यहाँ
0: जी
1: पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो
0: जी
1: ट्रेनिंग थी,
0: जी
1: वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज़्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, कि आप ये
0: बिल्कुल
1: सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, इतने
0: बिल्कुल
1: ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
0: बिल्कुल मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको
1: जी
0: अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं,
1: बिल्कुल
0: हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे
1: जी
0: उसको सिस्टम में ज्यादा ज्यादा ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं, तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
0: जीवन शैली है
1: जीवन शैली है, वो
0: जी,
1: एक लाइफ
0: इट्स अ वे
1: स्टाइल है
0: ऑफ
1: जो
0: लाइफ,
1: बिल्कुल अलग
0: इट्स अ
1: है
0: वे
1: वो,
0: ऑफ लाइफ,
1: और
0: यस
1: बहुत ही स्पेशल है मैं
0: एब्सोल्युटली
1: समझता हूँ। तो
0: एब्सोल्युटली।
1: वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें, ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें, और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के भी एक
0: जी
1: जज्बा पैदा हो।
0: जी
1: तो इस चीज़ में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं।
0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ, सो कंपलसरी जो कंसक्रिप्शन होता है कि भाई सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है,
1: जी
0: वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये ज़रूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि
1: जी
0: फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर सो मेनी एप्लीकेंट्स,
1: जी
0: 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो देयर लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरनमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक इंथुजियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाएं,
1: सर्विस
0: नेवी
1: दे
0: में जा पाएं, एयरफोर्स में जा पाएं। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ
1: बिल्कुल
0: लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो
1: जी
0: बरकरार रहे,
1: बरकरार रहे,
0: तो वो एक
1: वो
0: बहुत
1: जोश और जज्बा
0: बहुत
1: और देशभक्ति
0: वो
1: की जो भावना
0: जज्बा।
1: है वो बरकरार
0: एग्जैक्टली
1: रहनी चाहिए।
0: एग्जैक्टली
1: सर
0: एग्जैक्टली
1: एक चीज़ यहाँ भी बताएगा कि जैसे जो

0: शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जैसे आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे,
1: जी जी
0: तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
1: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो. तो
0: अच्छा
1: एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है. तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ,
0: जी
1: सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से.
0: अच्छा
1: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में, और वो अपना एनसीसी का 11th 12th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है, और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है. बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपेयर करने से छूट मिल जाती है.
0: अच्छा
1: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है, जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द अकेडमी. तो
0: ओके
1: एग्जाम आपको एनसीसी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपेयर करने की छूट मिल जाती है. यू हैव टू अपियर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी. एसएसबी आपने पास कर लिया
0: अच्छा
1: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द अकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो मुझे लगता है कि एनसीसी को

0: एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी। तो
1: ओके
0: एग्जाम आपको एसईसी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपेयर करने की छूट मिल जाती है। यू हैव टू अपेयर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी। एसएसबी आपने पास कर लिया
1: अच्छा
0: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हम जो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में
1: एग्जैक्टली
0: इंक्लूड कर सकते हैं।
1: कम से कम उनके
0: जी
1: अंदर वो
0: जी
1: चीज़, वो
0: राष्ट्रीय
1: जज्बा, वो
0: भावना
1: धारणा
0: और राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट ना।
1: अपहोल्ड, बिल्कुल
0: यस
1: बिल्कुल, वो
0: यस
1: चीज़ उनमें बरकरार रहनी चाहिए और उसके
0: बहुत
1: अंदर वो जोश जज्बा, और
0: जी
1: देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि
0: माध्यम
1: हाँ
0: होता
1: भाई
0: है।
1: क्यों वो
0: जी
1: अपने देश से मोहब्बत करता है और वो क्यों
0: बिल्कुल
1: उसका जानिसार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।
0: जी
1: सर, हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे, और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे
0: जी
1: अब आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो
0: जी
1: क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड
0: जी
1: किया जा रहा है उसको?
0: जी जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में, और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें।
0: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं।
1: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेडियो पर संदेश सोल्जर्स शाहिद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की फिल्म का ट्रैक। आप भी इंजॉय करें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से, 9868107070 नंबर है हमारा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज़ हर जगह है, हर चीज़ में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज़ हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज़ कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, चाहे आप किसी चीज़ को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज़ बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज़ को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर।

0: अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो वहां पे भी एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में,
1: अच्छा
0: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीज़ों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में, एआई विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि
1: ओके
0: आपने एमआरआई करा, एमआरआई को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए
1: जी
0: होगा,
1: जी
0: दे विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड द टेक्नोलॉजी,
1: बिल्कुल
0: दैट यू कैन नॉट निगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीज़ों को कंपेयर करके, 10 AI के जो, AI का जो डेटाबेस है, उससे उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है,
1: जी
0: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीज़ों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे
1: जी
0: अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम कैसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, उस पर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है।
1: जी
0: तो आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे,
1: जी
0: AI
1: जैसे कि
0: विल
1: अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर
0: जी
1: उसको वो
0: जी
1: एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज़ को. लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद
0: यस,
1: तक.
0: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है
1: जी
0: वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और
1: अच्छा
0: स्कोप ऑफ एरर काफ़ी कम कर दिया है उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। तो
1: बिल्कुल
0: ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये ज़रूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है, हम उसके और पास पहुँच सकते हैं। अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस
1: जी
0: कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
1: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि ज़िंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में.
0: जी
1: अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए
0: जी
1: बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे. लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूँ जो मैसेज आए हुए हैं. ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद. मैं शबनम BK दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर,
0: जी
1: इनका सवाल यह है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं. हालांकि इस पर बात हमने की
0: जी
1: थी,
0: जी जी
1: तो एक बार और प्लीज अगर बता
0: देखिए,
1: दीजिएगा.
0: ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है।
1: जी
0: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं।
1: जी
0: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम NTA कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज़ चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस,
1: अच्छा
0: वो सारा सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को के अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं,
1: अच्छा
0: कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट
1: बिल्कुल
0: हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
1: ओके,
0: जी
1: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और
0: पूरा मिल
1: ऑनलाइन अप्लाई
0: जाएगा।
1: भी आप वहीं से कर सकते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल
1: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड आरजे सर, जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी. आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फियरलेसली सर्विस टू आर नेशन. आई गिव
0: थैंक यू।
1: रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट माई सेल्फ शंकर लोड फ्रॉम गोमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड. वंदे मातरम, भारत माता की जय.
0: भारत माता की जय।
1: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं. लेकिन हम सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी, जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है.
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं, इसकी वजह से. तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे, यही बच्चे जो होते हैं फिर, ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं, हम
0: जी
1: उसी ज़िंदगी में, लाइफ स्टाइल में,
0: जी
1: तो वो सोशल मीडिया के भी काफ़ी काफ़ी हद तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है. तो NDA में जब ये जाते हैं, तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं वो, आपने अपने तौर पर जो चीज़ें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा.
0: जी जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है, जिसके
1: जी
0: पॉजिटिव भी हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है,
1: जी
0: अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं।
1: जी
0: बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है। ये तो एक
1: बिल्कुल
0: हाँ, ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है, जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से।
1: जी
0: तो इस वर्चुअल

0: एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पे फर्क पड़ने लग जाता है।
1: ओके
0: तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी
1: जी
0: फोन पे ही, इनका इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब NDA जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं।
1: जी
0: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं 5 लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम
1: अपने अपने
0: पे,
1: फोन पर हो,
0: या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पर लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी
1: एग्जैक्टली
0: हिल रही
1: मैं
0: है बस
1: वही पूछने
0: खाली।
1: वाला था सर, ये
0: जी
1: रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो
0: जी
1: चुके हैं
0: जी
1: लोग,
0: जी
1: इसका कोई मतलब ये असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे?
0: देखिए साहब, ये बहुत ज़रूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको, इस पे बैन लगाया
1: बैन
0: है,
1: किए हैं जी
0: दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज़ का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी, एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
1: बिल्कुल
0: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो
1: जी
0: ये भी अपने आप में इसका बुरी, मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही। आप
1: एग्जैक्टली
0: जैसे
1: आपने
0: मैंने
1: जैसे
0: पहले
1: बताया
0: बोला,
1: जी
0: इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीज़ों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर
1: जी
0: निकल के
1: जी
0: आने
1: जी
0: में
1: जी
0: बड़ी
1: जी
0: तकलीफ हो रही
1: सर
0: है।
1: एक चीज़ ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही
0: जी
1: एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है,
0: जी जी
1: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता।
0: जी
1: तो इससे बचने का कोई तरीका, जो क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
0: देखिए साहब, ये बहुत सबसे ज़रूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए
1: जी
0: कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज़ मोबाइल और हर चीज़ लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, किताबें भी ज़रूरी हैं।
1: किताबें जो
0: देखिए
1: है वो
0: साहब, आप
1: ऑनलाइन अगर आ गई तो उसका क्या कर
0: बिल्कुल
1: सकते हैं?
0: एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें
1: जी
0: पढ़ते मिलते थे,
1: बिल्कुल
0: मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गया है। तो दे द टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा
1: जी
0: सकते दूर उनसे, बट येस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है।
1: ये बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर
0: जी
1: जो असर पड़ रहा है, वो आपने क्या महसूस
0: हाँ
1: किया है,
0: जी
1: और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि
0: देखिए
1: उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
0: देखिए फौज में, आर्मी में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं कि
1: अच्छा
0: किस तरीके से दूर रहना है। देखिए फौज में बहुत सारी चीज़ें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब ना, कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे
1: जी
0: इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए। तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई,
1: अच्छा
0: कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
1: अच्छा मतलब
0: हाँ
1: सोशल मीडिया अकाउंट
0: यस,
1: भी
0: अकाउंट
1: नहीं
0: भी
1: बना सकते
0: डिलीट
1: हैं?
0: कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए
1: अच्छा
0: हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है। आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज़ मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इस चीज़ों से।
1: ओके
0: प्लस आपको पता ही है कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इज़ अ नेसेसरी ईविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज़ उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत ज़रूरी है।
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
0: छूट नहीं पा रहा है
1: तो
0: लोग।
1: क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए
0: देखिए कुछ चीज़ें
1: जब
0: तो
1: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं तब?
0: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीज़ें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट
1: जी
0: आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों।
1: जी तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और PGI को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही मोटिवेटिंग है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लिसनर सुन रहे होंगे
0: जी
1: उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
0: थैंक यू सो
1: तो
0: मच।
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
1: आपके
0: सो
1: आने के
0: मच
1: लिए।
0: जी।
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे, कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

श्रोताओं, अभी आप दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1315वीं कड़ी।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला।

0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ceet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Happy birthday to you, Stephen!
5: Thank you. How are you? Happy birthday, Stephen! Thank you,
6: congratulations!
5: Thank you, John! Thank you so very much. Hi, yes. Martin. How are you?
3: Oh, fine!
5: Thanks for coming in. Please come in. Please.
4: Oh, yes, sure. Yes. Yay. Why not?
3: Come! Yay.
4: Come!
3: John, please come here.
4: Oh, sure. Yay.
5: Join us for a drink, please.
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: कर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड, ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता

0: Eri deve angătase. Adic mă zbut. Deve angăta șerirse. Adic mân me. O tie.
1: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
2: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
2: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
2: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
2: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती

0: गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
2: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
0: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
7: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
8: सूरज।
6: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो, बहुत आसान।

0: पूछते हो।
1: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
0: कि उस अगली बार में बहुत मुश्किल।
1: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना? मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
0: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
1: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
2: वो तारा होता है।
1: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
3: वो रात और दिन भी बनाता है।
1: एकदम सही, एकदम
4: सही। वो हमें धूप भी देता है।
1: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
0: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
1: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
0: विटामिन डी।
1: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत
4: और
1: अच्छे।
4: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: पेड़ों को खाना भी देता है।
1: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
0: धीरे धीरे रात घूमते, जब भी सुबह रात होती जाती है।
1: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
0: हाँ।
3: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
1: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
0: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
1: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
0: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
4: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
1: ना।
4: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
1: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
0: वो बहुत बड़ा भी होता है।
1: बहुत बड़ा होता है
4: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
1: हम क्योंकि कहीं
0: दूर होता है, इसलिए
1: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
0: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ
4: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
5: सर्दी।
1: ऐसी वाली सर्दी ना। हाँ। अच्छी लगती है सर्दी।
0: हाँ। पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला, लेकिन
5: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है।
5: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
5: धरती काटे चक्कर इसके।
1: लगे ये चलता जाता है।
5: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
5: सर्दी गर्मी बनते इससे।
1: ये दिन रात बनाता है।
5: ये दिन रात बनाता है।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
5: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: सूरज ये
5: कहलाता है।
1: शाबाश सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
0: मौसी एक और पहेली आज ही बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
4: नहीं, जल्दी आना मौसी।
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं तो लाऊं कि नहीं आऊं।
0: वो भी दस पूछेंगे।
1: दस दस पहेलियाँ। अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
0: है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
1: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
4: नहीं, 80 हो जाएंगे।
1: फिर 100 हो जाएंगे। फिर 200। ओके इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे

0: जा रही हूँ, टाटा बाय बाय।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1315वीं कड़ी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
4: मीडियम वेव 438.6 मीटर है, 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलगी। आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्य निकोबारी प्रोग्राम तहांग। मिनका तलोन ही तरन मने चोंग महावट करे नलक एलहॉय निकुन पनम ही। जम्मू माय बंदर द डिक्लीपुर एमवी भारत सीमा चू माय बंदर द डिक्लीपुर इप्त नेरनाय मचूत्रा अलांगो चिंगेर इत हैवर कोइन रोत हातम नलक नलक न्याहडवाफ ngaj hawan ipte loyanai alango chinget it net kain rot la sakaman rang diklipur sek maya bandar an mingam cho el tala kare na jusri vijaypuram chamu little andaman hek cho mv bharat sima chu little andaman ipte neranai hevere alango chinget it hevere kain ro telapu nelaknya head of ngaj iphe e it majutra kain ro tahatam narang little andaman na jusri vijaypuram mv kalikhat chu little andaman ipte loyanai alango chinget it majutra kain ro tahatam nelaknya head of ngaj hawani prane ala ab chulai chinget it hevere kain ro telapu narang little andaman na jusri vijaypuram mv kalikhat chu little andaman खा निकोबार इप्त नेरनाय हेवरे अलांगो चिंगेट इत सट कइन रो त लापहु न लग्ने हेड ऑफ ngaj hawan इप्त नेरनाय मचुत्र अलांगो चिंगेट इत फेन कइन रो त लहारप न रंग खा निकोबार सक लिडी लंडा मानन मिन गम चोंग एल तला करे न जुसरी विजयपुरम हे कन मिन एम वी कालिकाट न जु लिडी लंडा मान द खा निकोबार इप्त लुई अला अब चुलाय चिंगेट इत सट कइन रो त लापहु न लग्ने हेड ऑफ ngaj hawan इप्त फेन अला अब चुलाय चिंगेट इत फेन कइन रो त लहारप न रंग खा निकोबार सक लिडी लंडा मान मिनगम चो एल तला करे न जुसरी विजयपुरम एम वी कालिकाट ना दे इंद्रे मिन हेक न असुन गेन दे नंग चुखा निकोबार इप्तसात अलाब जुलाई चिंगे इते लुई कई रो तला हराब न लग न्या डोवाफ ना छावा निप्त हेवरे अलांग चिंगे इते फैन कई रो तला हराब न रंग खा निकोबार सक लिडी लना मान न मिनगम चो एल तला करे न जुसरी विजयपुरम जम्मू इन मिने तारोखर ला लोंग कुन पनम एम वी सेंटिनल चू इन मिने ला लोंग मिन कुन पनम इप्त मचुत्र अला अब चुलाई चिंगे इते सट कई रो तला पु नेरनाय मचुत्र अलांग चिंगेर इत मचुत्र कइन रो तलाहत ngaj pari na mv campbell bay इचुगो ये पैसेंजर का टिकट mv नालंदा इत नेरनाय मचुत्र जामु ननकोरी त campbell bay ngaj कोरेन आचा ना हरिंग मत नो टिकट न कैंसिल ने नो टिकट नालंदा ngaj के टिकट campbell bay ngaj हावान मिन गम चोंग इ राने अलाप जुलाई चिंगेर इत सम कइन रो तलापहु नलक त campbell bay सग ननकोरेन मिन गम चोंग एल तला करे न जुसरी विजयपुरम अनुनुने मिन कातलोन ही।
5: Drive smart, drive Maruti Suzuki Alto Caton. Display hai mileage of 24.90 km/L. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags. Next Gen K Series 1.0-liter dual jet, dual VVT engine or spacious interiors. Buy offers up to 40,500. Offers stock rehne tak hi.
6: Aaj hi visit kare apne nazdeeki Maruti dealership. Sharte lagu.
7: काले वानु ये होंग ये वांग जकरेल कुई जकु आला को आप करे अट काले एन मिन का हंगा याने ही मलेरिया इन वाहन लो देन मलेरिया इन वाले तक किना पही अंत गम एनोफेलिस जेंग कन मिसो के ये ही अटिला रेन लेन रे ngai miho ai poe hangen wa hawa unat majerta nu wa ye hi haro unhe ke nup te yu nga mak ni ta si pati hi unat lenen kupti kuin

0: ngach intai e hangam program ya langam muharam rahanya hafiz ibrahim ansari hoyang edal ngangin ngach intang mu hek inore changro git kasat ida fan kaino telah harap ngayen
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम।

0: HIV/AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: हे, स्टिल स्टक ऑन ओल्ड कार? स्विच टू स्मार्टर फ्यूल विद मोर सेविंग्स विद विक्टोरियस SCNG।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील

0: रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिकॉन शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टक्कर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वंशा विलियम्स
2: कार्यक्रम। हाँ, एक और बात,
3: होम मिनिस्टर अमित शाह टुडे कॉल्ड फॉर अ यूनाइटेड वॉर अगेंस्ट ड्रग्स सेइंग द ड्रग मेनेस थ्रेटन्स नेशनल सिक्योरिटी, सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ एंड द कंट्री। He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. Mr. Shah made these remarks while addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center.

ना सर सजदे में झुकता है, ना कारे खैर होता है। कभी कुरान पढ़ने का ख्याल आया न आया है, किसी को फिक्र दौलत है किसी

श्रोताओं, अभी आप महफिले कव्वाली कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे कव्वाल थे जाहिद नजान।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम अपने पसंद के गीत सुनने के लिए आपको अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजना होगा। इस नंबर पर हमारा नंबर है 9474234000। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत शान फिल्म से, जिसे सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज आया है पिंगवाला चौक जालंधर से ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत और कमल साहनी का।

अगली फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र और नोखेवाल की। हमारे ये दोस्त सुनना चाहते हैं राजा बाबू फिल्म का ये गीत।

ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं रॉक स्टार फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवाते हैं सागर फिल्म का गाना। सुनने के ख्वाहिशमंद है नवाशहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रियम, बेबी, वामिका और वाणी।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने के शौकीन हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर

0: चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम

0: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 MHz पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो डियर फ्रेंड,
0: दोस्तों, जो आज संघर्ष से घबराता है वो कल सफलता का स्वाद नहीं पाता है। कदम बढ़ाते रहो विश्वास के साथ, क्योंकि समय हर मेहनत का फल जरूर लौटाता है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में। इस सफर में आज हूँ मैं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबाना।
1: हेलो डियर फ्रेंड,
0: दोस्तों, अगर आप भी गानों के शौकीन हैं और सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत, तो जल्दी से अपना नाम, पता व फ़ोन नंबर रजिस्टर करवाइए हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000, और हम आपको कॉल करेंगे और सुनवाएंगे आपके पसंद के गीत। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जुड़ते हैं आज के हमारे पहले दोस्त से, जो कि है कश्मीर से लतीफ़ जी। हेलो डियर फ्रेंड्स।
2: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, लतीफ़ जी से बात हो रही है?
2: हाँ, मेरा नाम लतीफ़ अहमद रीना, कश्मीर सोनामर्ग।
0: जी लतीफ़ जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और कश्मीर के क्या हाल चाल हैं
2: आजकल? तो यहाँ पे गर्मी, बहुत गर्मी है आजकल यहाँ पे।
0: जी जी, वैसे आप शायद सेब का बिजनेस करते हैं ना, फलों का?
2: हाँ, ये बागवानी।
0: जी जी, बागवानी का बिजनेस करते हैं, तो अभी कैसे चल रही है आपकी बागवानी?
2: आजकल तो बागवानी लगा है, अभी सितंबर में, आखिरी सितंबर में बागवानी का फल आएगा, वो तो मंडी में जाएगा।
0: जी जी, मतलब अभी आप फ्री हैं?
2: हाँ,
0: तो फ्री
2: अभी तो यहाँ पे अमरनाथ का सीजन आने वाला है, बालताल। हाँ, यात्रा, बहुत यात्रा आएगा हिंदुस्तान से, बहुत स्टेटों से।
0: जी जी, वो भी करते हैं आप?
2: हाँ, वहाँ पे भी जाते हैं, घोड़े वाले भी जाते हैं, पालकी वाले, तंबू वाले।
0: तो आप भी जाते हैं वहाँ पे?
2: हाँ, हमारे यहाँ वहाँ पे तंबू लगा है।
0: जी जी जी, तो मतलब हाँ, एक सीजन खत्म होता है तो दूसरा सीजन शुरू हो जाता है, ऐसा है ना?
2: हाँ, वहाँ घोड़े वाला भी जाते हैं।
0: जी चलिए, अच्छी बात है, मतलब आप फ्री नहीं रहते हैं, बिजी रहते हैं। एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आज आप फ्री बैठे हैं तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: हदसे भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना।
0: जी, कयामत मूवी का बहुत ही प्यारा सा गीत है, एतबार नहीं करना। जी जी, तो चलिए, क्या बोल रहे हैं?
2: हमारे साथ धर्मवीर भगवान सिंह परमा और राकेश कुमार शुमला से।
0: तो चलिए फिर मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: शुक्रिया मैडम।

0: चलिए अब बात करते हैं केसरी सिंह जी से, जो कि रहने वाले हैं मेरठ के। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो दीदी को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार, केसरी जी से बात हो रही है?
1: जी हाँ दीदी, मैं केसरी सिंह राजपूत बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। केसरी जी कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया दीदी, और आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत ही बढ़िया हैं। और मेरठ का मौसम कैसा है फिलहाल अभी?
1: मेरठ नहीं दीदी, अभी भोपाल है अपना डिस्ट्रिक्ट भोपाल।
0: अच्छा, तो आप मेरठ में रह रहे हैं?
1: नहीं नहीं दीदी, बैरसिया रहते हैं।
0: अच्छा, तो आप भोपाल के रहने वाले हैं, तो भोपाल के क्या हालचाल हैं अभी फिलहाल?
1: बढ़िया हालचाल है दीदी, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और खेतों की बुआई चल रही है, सोयाबीन वगैरह बुग रहे हैं, और धान लगेगी, धान की पौध की रोपाई हो चुकी है।
0: अच्छा, और वैसे अभी सोयाबीन की कटाई कब होगी?
1: ये लगभग दीदी 3 महीने बाद होती है।
0: अच्छा, 3 महीने के बाद में सोयाबीन की कटाई होगी, फिर नेक्स्ट जो है आप नेक्स्ट बीज है उसमें गाड़ेंगे आप उसके बाद?
1: नहीं, वो अभी दीदी ये सोयाबीन की फसल बुब रही है, तो यही 3 महीने की फसल है, ये 3 महीने
0: अच्छा,
1: में आ जाती है।
0: ओके। हाँ, 3 महीने के बाद फिर दूसरे फसल उगाएंगे आप ना?
1: हाँ, फिर गैप देना पड़ता है, फिर गेहूँ की फसल लगती है।
0: जी चलिए, अच्छी बात है, ऐसे रूटीन चलते रहता है, आप भी बिजी रहते हैं, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: जी।

0: चंदेल जी भगवान सिंह परमार जी हैं, प्रेम सिंह की बोधिया जी और विजयपुरम से पूर्णिमा दीदी हैं और धर्मवीर जी हैं और आपके लिए भी रहेगा जी।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
0: ओके दीदी, थैंक यू,
1: धन्यवाद।

0: चलिए अब संपर्क साधा करते हैं उदयपुर राजस्थान से सुशील जी से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम। सुशील यादव बोल रहा हूँ उदयपुर राजस्थान से।
0: सुशील जी बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया है मैडम, सब आशीर्वाद है सब लोगों का।
0: चलिए अच्छी बात है। वैसे आज आपने लंच में क्या खाना खाया है?
1: आज लंच में हमने हरी सब्जी खाई है, ग्वार फलियाँ होती है यहाँ पर, भिंडी और ग्वार फली की वो खाई है।
0: चलिए अच्छी बात है। तो वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो मैम अभी बस बारिश का इंतजार है, कुछ बादल आ रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है।
0: मतलब अभी तक वहाँ पे बारिश हुई नहीं है एक बार भी?
1: हाँ अभी हुई नहीं, सप्ते भर पहले हुई थी, लेकिन मानसून से पूर्व जो बारिश होती है वो इतनी नहीं हुई है। जयपुर राजस्थान में तो अच्छी हो रही है।
0: जी जी, मतलब आपके एरिया में नहीं हुई है। जी
1: तो मालिक से यही दुआ कर रहे हैं जल्दी बारिश आए
0: जी
1: और
0: जी।
1: हम पेड़ पौधे अच्छे लगाएं,
0: जी जी
1: हरियाली पत्थर लगा रखा है मैंने बहुत कुछ।
0: अच्छा, तो गानों के शौकीन रखते हैं आप, ये तो हमें पता है। इसके अलावा क्या और शौक है आपके?
1: एक तो ये रेडियो का पूरा शौक है मुझे, बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी।
1: और इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान से संबंधित सारे प्रोग्राम में सुनता हूँ।
0: जी जी,
1: यानी आपका लाइफ साइंस रेडियो से प्रसारण बराबर होते रहते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं आपके आकाशवाणी के केंद्रों से
0: जी जी,
1: जो आपको निःशुल्क में सारी राय देते हैं और उच्च उच्च श्रेणी की देते हैं
0: जी।
1: और मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर श्रोता को इस निःशुल्क सेवा का जरूर फायदा उठाना।
0: जी जी, फायदा उठाइए और जानकारी प्राप्त करिए ना।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम से आज आप जुड़े हैं, वो कौन सा गीत है जो सुनना चाहेंगे?
1: बहुत दिनों से कोई एक गाना नहीं सुना था
0: जी।
1: फिल्म हीरालाल पन्नालाल का गाना है,
0: अच्छा,
1: चल गई मैं तेरे रंग में।
0: जी, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ों में है ना ये गीत?
1: हाँ जी किशोर कुमार आशा भोसले
0: जी, चलिए फिर हम
1: का।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: मैं साथ में है मेरे फैमिली वाले, उनके नाम ले लेता हूँ।
0: जी जी, ज़रूर बताइए।
1: रेणु यादव बोल रही हैं और मोहित यादव हैं, कार्तिक यादव हैं, तनु और नमिता हैं। मैम एक प्रोग्राम से रिलेटेड और मेरे को रिक्वेस्ट करनी थी।
0: जी जी बोलिए।
1: जो आपका SMS माई चॉइस गुरुवार को प्रोग्राम आता है सवेरे 10 बजे,
0: जी जी,
1: तो उसमें प्रोग्राम बेहतरीन लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे कमी लगती है
0: जी।
1: कि उस कार्यक्रम में जो आपकी आवाज तो कम आती है
0: जी
1: और गानों की आवाज अच्छी आती है,
0: जी
1: तो
0: जी,
1: थोड़ा सा हम लोगों को जो संदेश होते हैं वो सुनने में दिक्कत आती है, तो तकनीकी रूप से आप दिखवाइएगा।
0: जी जी जी, हम जरूर कोशिश करेंगे जो भी प्रॉब्लम है वो सुलझ जाए, ठीक है ना जी? ठीक है, चलिए फिर सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: कार्यक्रम में शामिल करने के लिए धन्यवाद आपको।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मैं राजी हूँ गुजरिया, मैं राजी हूँ गुजरिया।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: ब्रेक के बाद हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को जारी रखते हुए जुड़ते हैं हमारे अगले दोस्त से, जो कि ग्राम बाया MP से हैं, रमेश प्रजापति जी। हेलो डियर फ्रेंड्स।
4: हेलो मैम, नमस्कार।
1: बहुत बहुत नमस्कार, रमेश जी से बात हो रही है।
4: जी मैं रमेश प्रजापति, ग्राम बाया, तहसील रायती, जिला सीहोर, MP से बोल रहा हूँ मैं।
1: जी आपने पूरा डिटेल्स बता दिया है, कोई भी आपको ढूंढ लेगा अभी, है ना?
4: जी
1: चलिए अच्छी बात है। रमेश जी कैसे हैं आप?
4: मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, गर्मी के आनंद ले रहा हूँ। पानी की रास्ता देख रहे हैं, पानी गिरे कम से कम, तो पानी तो अभी आ नहीं रहा, गर्मी आनंद ले रहा हूँ। दुकान में बैठा हूँ, काम कर रहा था।
1: अच्छा
4: आपका फोन आ गया।
1: चलिए देखिए हमने कॉल लगा दिया, मतलब थोड़ा दुकान में मजा ले रहे थे, साथ साथ अभी गीतों का भी मजा लेंगे ना।
4: जी जी
1: जी। तो बारिश अभी तक हुई नहीं है वहाँ पे कि आके चले गई है?

0: जी अभी एक रोज गिला था थोड़ा सा पानी परसों के रोज,
1: जी जी
0: इसके बाद अब धूप है वो जम के।
1: चलिए अच्छी बात है। इस कार्यक्रम से आज आप हमसे जुड़े हैं, तो वो कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम के माध्यम आज आप सुनना चाहेंगे?
0: वो फिल्म का नाम है गीत गीत गाता चल, और गाने के बोले मोहे छोटा मिला भरतार जवानी कैसे कटे।
1: जी बहुत ही
0: और
1: अच्छा
0: हमारे कुछ
1: गीत।
0: मित्रों को याद कर लूं,
1: हाँ जरूर जरूर,
0: सबसे पहले तो आपको
1: बहुत बहुत
0: ये
1: शुक्रिया।
0: भगवान सिंह परमार, पूरन वर्मा जी, गजराज लोजी, केसरी सिंह राजपूत, मांगीलाल चंदे, रमेश पात्रे, अमर सिंह साहू, भाई को मुंडा है, अमन भस्माकारी है, गोल्डी है, पूनम जी है कानपुर से, बिमल है, राकेश है, अविनाश जी है, पूर्णिमा जी है विजयपुरम से, संगीता जी आशुतोष जी और शिव लोहार विदिशा से।
1: चलिए सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
0: जी धन्यवाद मैम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चलिए अब बात करते हैं अजीत शर्मा से, जो औरंगाबाद एमपी के रहने वाले हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। अजीत शर्मा जी से बात हो रही है।
1: हाँ जी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: जी अजीत जी, क्या करते हैं आप?
1: साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं।
0: क्या बोले आप?
1: साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं।
0: अच्छा, साइकिल के रिपेयरिंग का काम करते हैं। इसके अलावा क्या शौक रखते हैं आप?
1: इसके अलावा तो वही घूमने का शौक है।
0: जी, ज़्यादातर कैसे गीत आपको पसंद है, नए पुराने?
1: पुराने गीत ज़्यादा।
0: जी, पुराने गीतों की बात ही कुछ और होती है ना।
1: हाँ जी,
0: जी, वैसे इस कार्यक्रम से आज हमने आपको जोड़ा है, आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत बढ़िया लग रहा है। कॉल आई उधर से, बहुत बढ़िया।
0: जी, तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आपने कौन सा गीत सोचा है आज इस कार्यक्रम में सुनने के लिए?
1: गाने के बोल हैं मेरे महबूब तुझे सलाम, उनका नाम बगावत।
0: बगावत मूवी का मेरे महबूब तुझे सलाम, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। तो चलिए फिर हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: चलिए देखते हैं हमारे अगले दोस्त कौन सा गीत सुनना पसंद करते हैं। जुड़ते हैं इंदौर से अनिल कौचलिया जी से। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो डियर फ्रेंड, अनिल कौचलिया जी से बात कर रहे हैं।
0: अनिल कौचलिया जी कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं और इस समय इंदौर के जो भी मध्य प्रदेश में आता है वहाँ पर मानसून की शुरुआत हो गई है, पिछले 3-4 दिन से रोज बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है।
0: जी आज आप घर पे हैं?
1: जी, आज क्या अभी 3 दिन की ट्रेन की छुट्टी है आज।

0: जो शुक्रवार है तो मुहर्रम की छुट्टी लंबी हुई थी, पर सत्ताईस है तो शनिवार के छुट्टी है, परसों 28 जून है, रविवार के साथ 3 दिन छुट्टी है। नहीं तो हम हमेशा आपको ये बोलते कि हम बैंक से बात कर रहे हैं।
1: जी हाँ, इसलिए मैंने पूछा आज आप घर पे हैं कि कहीं बाहर हैं करके।
0: बात कर रहे हैं
1: जी जी तो अभी आपने बताया कितनी लंबी छुट्टी है, तो कहीं घूमने का प्लान बनाया है फैमिली के साथ आपने?
0: नहीं नहीं अभी जब हमारे एरिया है वो क्या एक तालाब है, तालाब के निकट जाता है, तो थोड़ी भी बारिश आती है तो पूरे कॉलोनी में पानी भरा जाता है, तो अच्छी बारिश होती है तो हमको बिल्कुल सतर्क रहना पड़ता है।
1: जी जी जी मतलब आपके घर के पास है?
0: हाँ, तो पानी भर जाता है और घर में भी पानी भरता है। अगर एक दिन शादी बारिश हो जाए तो घर में पानी भरता है।
1: जी जी
0: तो बारिश खुद आती है, बारिश जब आती है तो हम घर पे रहते, कहीं जाते नहीं।
1: अच्छा, तो मतलब फुल तालाब भर जाता है तो मुश्किल हो जाती है।
0: बिल्कुल पूरा एरिया मतलब जो आसपास जो कॉलोनियाँ बनी वो तालाब के निकट बनी है, घरों में पानी भर जाता है क्योंकि तालाब ओवरफ्लो होता है आसपास, निश्चित रूप से जो घर है वहाँ पानी भरा है।
1: जी जी जी तो अभी जो है बारिश हल्की फुल्की गिर रही है या फिर ज्यादा हो रही है?
0: नहीं अभी परसों बहुत तेज हुई थी, अभी भी हो रही है लेकिन ज्यादा तेज नहीं,
1: अच्छा
0: मतलब
1: जी
0: परेशान करने वाली बारिश।
1: जी जी जी नहीं नहीं बारिश तो सबको पसंद होती है ना वैसे।
0: बिल्कुल
1: जी तो फिर इस कार्यक्रम से आज हमने आपको जोड़ा है, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम है सड़क, आवाज है और गीत है आप तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते।
1: जी सड़क मूवी का हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तो चलिए फिर हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: और हेलो
1: जी
0: ये गीत हम आपके साथ और आकाशवाणी जयपुर की पूरी टीम के साथ।
1: तो ठीक है, चलिए फिर मिलकर सब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: की रहने वाले हैं उज्जैन से प्रेम सिंह जी। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो डियर शबाना जी, नमस्ते।
0: बहुत बहुत नमस्कार। प्रेम सिंह जी से बात हो रही है।
1: हाँ जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच। मैं मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम सुन रहा हूँ शुरू से।
0: जी, अच्छी बात है। और वैसे कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके बहुत भी अच्छा लग रहा है मुझे।
0: चलिए चलिए, फिर अपने दोस्तों को खुलकर बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है। आज हमने आपको कॉल किया है ना।
1: जी बिल्कुल, हाँ आपने हमें कॉल किया। ऐसा मतलब कोई भी आकस्मिक बहुत कम करते हैं कि
0: जी
1: अपने ओर से कॉल लगा के श्रोता को मतलब पार्टिसिपेट करवाते हैं प्रोग्राम में। हाँ बहुत सारे आकस्मिक फोन इन प्रोग्राम चलते हैं वो, लेकिन क्या होता है उसमें कि श्रोता को खुद कॉल लगाना पड़ता है। लेकिन इसी विजयपुरम पर भी ऐसा होता है कि उधर से कॉल आते हैं श्रोताओं को, तो मतलब ये समझिए कि श्रोता को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।
0: जी क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे जुड़े, हमसे बातें करें, सभी को चांस देना चाहिए ना, इसीलिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: सवाल। आपको बताऊँ, मौसम काफी अच्छा है हमारे यहाँ पे अभी। जी बारिश हो रही है हल्की हल्की और थोड़ी तेजी बारिश होती चल रहा पर। जी
0: जी तो मजा ले रहे हैं आप बारिश की।
1: हाँ जी बिल्कुल, किसानों में भी काफी उत्साह है यहाँ पे फसल की।
0: जी
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: इस बारिश के साथ साथ आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में?
1: जी मैं गीत हमारे दोस्त हैं रमेश टेलर जी, उनको समर्पित करना चाहूंगा क्योंकि उनसे हमारे कई दिनों से बात नहीं हो पा रही है।
0: जी, मैं आशा
1: उनका
0: करती हूँ वो
1: कॉल
0: सुन रहे
1: आया
0: होंगे।
1: था,
0: जी,
1: जी हाँ उनका भी कॉल आया था कार्यक्रम में। जी तो ये गाना उन्हीं के लिए रहेगा और मैं यही कहूँगा कि वो मुझे कॉल करके बात करें।
0: जी चलिए, वो सुन रहे हैं शायद, तो शायद आपको कॉल आ जाए। तो आप बता दीजिए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है दम लगा के हैशा और गाने के बोले तुमसे मिला दिल में उठा दर्द करा रहा।
0: जी तो चलिए फिर हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: जी सपना जी एक बात और कहेंगे,
0: जी
1: रमेश जी का अगर कॉल नहीं आया तो हम उनके घर चले जाएंगे प्यार की लड़ाई करने के लिए। जी
0: चलिए, अच्छी बात है, दोस्तों से लड़ाई भी ज़रूरी है ना दोस्तों के
1: बिल्कुल
0: साथ में। चलिए अच्छी बात है, आज इस कार्यक्रम से आप जुड़े हैं, हम आपको सुनवाते हैं आपका पसंद का ये गीत।
1: जी थैंक यू।
0: धन्यवाद।

दोस्तों, अब इस कार्यक्रम से चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगी कि कदम छोटे सही, मगर रुकने मत देना। सपनों की राह में खुद को झुकने मत देना। इस विचार के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत।

दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोपहर के 3:30 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम, यूं ही गाते रहो।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मधुर संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जुड़ने के बाद हमें कुछ सुकून मिलता है। लीजिए, हाजिर है चुने हुए कुछ ऐसे ही गीत। निर्देशक देवेंद्र गोयल ने 1975 में गोयल सिने कॉरपोरेशन के बैनर तले एक फिल्म बनाई थी, एक महल हो सपनों का। फिल्म में कलाकार थे अशोक कुमार, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, लीना चंदावरकर, देवेन वर्मा और डेविड। गीतों की रचना की साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया रवि ने। इस फिल्म में लता मंगेशकर ने एक बहुत ही खूबसूरत गीत गाया है जिसे हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं।

1961 में एक चर्चित फिल्म रिलीज हुई थी माया। फिल्म में गीत लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने और अपने आकर्षक संगीत से गीतों में जान फूंक दी थी संगीतकार सलील चौधरी ने। लाइट ऑफ एशिया फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे डीडी कश्यप। फिल्म में देव आनंद, माला सिन्हा, ललिता पवार, मुबारक, आगा, सुंदर और हेलन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। लीजिए सुनिए रफी और लता के युगल स्वरों में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, गीतों की कड़ी में अब हम शामिल करते हैं साजन बिना सुहागन फिल्म का एक गीत। सावन कुमार द्वारा निर्देशित ये फिल्म 1978 में मरकुरी प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी। कलाकार थे नूतन, राजेंद्र कुमार, डॉक्टर श्रीराम लागू, विनोद मेहरा और बेबी पद्मिनी कोल्हापुरे। फिल्म में इंदिवर के अलावा सावन कुमार ने भी एक गीत की रचना की है। संगीत उषा खन्ना का है। तो अब लीजिए प्रस्तुत है ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 1967 में बहु प्रतिभा के धनी मनोज कुमार ने विशाल पिक्चर्स के बैनर तले देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म बनाई थी उपकार, और फिल्म बहुत प्रसिद्ध भी हुई। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये फिल्म देखी ना हो। फिल्म में इंदिवर के अलावा कमर जलालाबादी, गुलशन बावरा और प्रेम धवन ने गीत लिखे हैं। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने गीतों को संगीत से सजाया है। मन्ना डे की आवाज़ में जो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं उसे लिखा है इंदिवर ने।

श्रोताओं, अब बात करते हैं फिल्म मिलन की। इस फिल्म का नाम सुनते ही सुनील दत्त और नूतन का चेहरा हमारे जहन में घूमने लगता है। 1967 में निर्देशक ए सुब्बा राव ने प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनाई थी। जमुना, प्राण, सुरेंद्र, देवेन वर्मा, मुकरी और डेविड ने भी फिल्म में भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म के लगभग सभी गीत बहुत ही लोकप्रिय हुए और आज भी आनंद बख्शी के लिखे गीतों को हर कोई गुनगुनाता है। गीतों को संगीत से सुशोभित किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, फिल्म मिलन का ये सदाबहार गीत अब आपके लिए।

प्राण जाए पर वचन न जाए। श्रोताओं, इस फिल्म से हमने लिया है कार्यक्रम का अंतिम गीत। 1973 में RM8 प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में सुनील दत्त, रेखा, बिंदु, रंजीत, जीवन, मदनपुरी, जयश्री टी और इफ्तिखार ने अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अली रजा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में SH बिहारी ने गीत लिखे और संगीतकार हैं OP नैयर। हम आपको बता दें, आशा भोसले को इस गीत के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।

श्रोताओं, काश ये लम्हा, ये वक्त यूं ही थम जाता और हम पुराने गीतों का लुत्फ यूं ही उठाते रहते, पर वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। हम इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थीं मीना प्रकाश। हंड्रेड पॉइंट नाइन मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।
1: मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था, रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया की कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हां, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था। हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

गुजर जाए दिन। तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था, उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे, रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता, यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था, ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि यह तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर,

ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி வழங்கும் தமிழ் அமுதம் வணக்கம் நேயர்களே.

श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए बंगला कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी किसान भाइयों एवं बहनों को आंचल का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक नेक विचार से। और किसान साथियों, आज का विचार है, सबसे शिक्षित व्यक्ति वही है जो अपने जीवन और परिवेश को सबसे अच्छे से समझता है। और ये विचार है हेलेन केलर के। कहने का अर्थ है, सच्ची शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन की समझ से जुड़ी होती है। और हमारे किसान भाइयों के अंदर जीवन की अद्भुत समझ होती है, क्योंकि वे पेड़ पौधों से जुड़े होते हैं जो खुद में जीवन का स्रोत है। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और पूछ लेते हैं आज का प्रश्न, जो कुछ इस प्रकार है। झुलसा रोग यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति प्रतिरोध की क्षमता वाली धान की किस्में कौन कौन सी हैं? किसान साथियों, ये रहा आज का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको सोचना है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान भाइयों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे छोलदारी के रहने वाले श्री धीरेन्द्र नाथ मधु जी से, जो कि एक किसान है। आइए बातचीत के माध्यम जाने खेत बचाओ अभियान पर उनके विचार।
4: किसान साथियों, आइए मुलाकात करते हैं छोलदारी गांव के किसान धीरेन्द्र नाथ मधु जी के साथ। मधु जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
5: नमस्कार।
4: बताइए मधु जी, आप अपने बारे में कि किस तरह से आप खेती बाड़ी से जुड़े और इस क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ?
5: देखिए, मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो बंगाली सेटलर्स का 1949-50 में पहला जत्था जो आया था
4: जी,
5: सेटल हुए हैं। मैं उस परिवार से बिलोंग्स करता हूँ
4: जी,
5: और मेरा जन्म अंडमान में ही हुआ है। तो बचपन से ही किसान के बेटे के नाते खेतीबाड़ी से तो लगाव जुड़ा हुआ है।
4: रिटायरमेंट के बाद खेतीबाड़ी से जुड़े और कई संस्थाओं से जुड़े, अब तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को अच्छा संदेश भी देते हैं कि खाली नहीं बैठना चाहिए, खुद के शरीर के लिए भी वो अच्छा नहीं होता है। मधु जी, अब हम खेतीबाड़ी की ओर आते हैं। खेतीबाड़ी में आपने क्या क्या रखा है, कैसे आप करते हैं, अपना समय किस प्रकार खेतों में बिताते हैं, वो बताएं।
5: जी, ऐसे ही है कि अपना जो है जैविक खेती होता है, क्योंकि खेती तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पुश्तैनी जो सेटलमेंट के दौरान जो खेती मिला था पिताजी को, उसी अभी भाग बंटवारा जो हुआ है उसमें अपने हिस्से में करीबन 3000 स्क्वायर मीटर ही आया है, तो बस उतने सीमित, पहले तो पूरा ही करता था। तो पिताजी के जाने के बाद जो है इसको पार्टी होने के बाद ये कम जमीन है, तो उनमें जैविक खेती ही करते हैं। तो उसमें जो उपज होता है, जो कंज्यूम अपना परिवार के लिए होता है, उसका अतिरिक्त जो होता है वो मार्केट में जाता है। तो लोगों को जो है, जैसे हमारे यहाँ जंगली घाट में भी संडे मार्केट होता है, वैसे ही हमारा वहाँ जो संडे मार्केट है, तो उसमें तिरूर से लेकर गुत्तापाड़ा वंडूर तक के सारे किसान तो आते ही हैं।

0: और कस्टमर भी, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो
1: जी
0: कस्टमर भी बहुत मात्रा में आता है और वहाँ आए, तो सभी किसान जो है अपने घर के लिए जो उपज है
1: जी
0: वो कंज्यूम घर का अपना रख के बाकी जो ज़्यादा होता है वो यहाँ सेल के लिए आता है। तो इसमें क्या होता है कि ये कंज्यूमर और किसान ये
1: जी
0: दोनों के बीच में पहले बिचौलिया होता था कि
1: अच्छा
0: किसानों के खेती से कम दाम में जो है
1: लेकर
0: बिचौलिया
1: चले
0: ले
1: जाते
0: लेकर
1: थे।
0: चले जाते थे और किसान को कम पैसा मिलता था। अब किसान जो है ये संडे मार्केट में सीधा लाता है तो ये बिचौलिया नहीं है, तो इसमें पूरा फायदा जो है किसान को होता है। और किसान जो अपना सामान है तो वो मन अपना चाहे तो वो थोड़ा कम दाम में भी देता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: दोनों को ही फायदा होता है। किसान को सीधे पैसा मिलता है और कस्टमर को थोड़ा सा कम में मिलता है, और प्रोड्यूस जो है
1: जी
0: साग सब्जी जो भी है वो सीधे सस्ते में भी मिलता है और क्वालिटी भी उनका अच्छा होता
1: अच्छा
0: है,
1: रहता है।
0: तो उसका भी देखभाल मैनेजमेंट करता हूँ तो ये हो जाता है।
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके अलावा पहले पोल्ट्री का काम करता था तो पोल्ट्री का छोड़ दिया है क्योंकि एक साथ वो बहुत मुश्किल होता था।
1: जी
0: अभी जो है मछली पालन का एक जो है मैडम
1: तालाब भी है शायद।
0: जी
1: जी
0: तालाब है अपना, तो पिछले दिनों नाबार्ड यानी भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट,
1: जी
0: क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मीठे पानी का झींगा पालन का कोई कल्चर यहाँ था नहीं,
1: अच्छा
0: तो नाबार्ड के जरिए जो है मीठे पानी का जो श्रिम्प है, हमने
1: जी
0: बंगला में गलदा चिंगड़ी कहते हैं, मोटा
1: अच्छा
0: सिर होता है, तो वो टेस्टी भी है लेकिन इसका कल्चर अंडमान निकोबार में होता नहीं था। तो उसका 15 लाख का एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट ने चौलदरी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनाया था और उसने 25 किसानों को जो है इसमें भागीदारी, जिसका पॉन्ड है उनको लिया
1: अच्छा,
0: था। तो
1: सिर्फ
0: ये
1: छोलदारी के ही किसान थे कि अलग
0: केवल
1: अलग,
0: छोलदारी के ही
1: केवल
0: अपने हैं,
1: छोलदारी
0: तो
1: के किसान?
0: 25 किसानों को लिया था। लेकिन सरकार की जो अभियान है, सरकार का जो नीति होता है
1: जी
0: उनमें 100% अगर फ्री 100% सब्सिडी दिया जाए तो किसान जो है कभी कभार जो है वो उसमें अपना दिलचस्प नहीं दिखाता है। तो मैंने एग्रीमेंट के समय MOU के समय कह दिया था कि 10% जो है किसान के पास रहने दीजिए, अगर किसान का थोड़ा सा भी खर्चा होगा तो वो उसमें देख रेख अच्छा करेगा। अगर 100% होगा तो किसान को ये लगेगा कि चलो कुछ हो ना हो उसमें क्या है, मेरा तो कुछ गया नहीं। इसीलिए 10% यानी 1.150 लाख रुपया हम लोगों ने अपने सिर पे ले लिया था, तो
1: अच्छा
0: सरकार का भागीदारी इसमें 13.5 लाख था और हम लोगों का 1.5 लाख, ये 15 लाख का प्रोजेक्ट था। तो किसानों को 25 किसानों को 6-6 हज़ार करके देना पड़ा। तो ये करके जो है पूरे ये पिछले 1.5 साल में जो है दो बैच में ये मीठे पानी का जो बच्चा है उसको मेनलैंड से मंगाया गया था, उसके बाद ये चूना फिर मछलियों का भोजन ये सब जो है किसानों को दो बार में दिया गया। और एवरेज जो है सभी किसान करीबन 60 से 70 हज़ार रुपया ये 1.5 साल में ये केवल झींगा पालन से किया है। तो अब ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बाकी टोटल 47 सोसाइटीज़ हैं, उनमें से
1: जी
0: हमारा सोसाइटी ने किया है। तो जैसे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में सोर्सेस अच्छा है पानी का,
1: जी
0: तो
1: जी
0: नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में जितने सोसाइटी होंगे उनमें से करना जो चाहते हैं, तो वो अभी हमारे सोसाइटी में ये 25 किसान में से जिनके यहाँ अच्छा काम हुआ है उनको हम एक्सपर्ट मान के उनसे
1: वहाँ
0: जो है
1: वहाँ भी
0: वहाँ में भी इसे करा
1: अच्छा।
0: सकते हैं। तो इसके लिए अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी करना
1: जी
0: चाहते हैं तो वो सीधे नाबार्ड से अप्लाई
1: संपर्क कर सकते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं, तो आगे के लिए उनका भी यहाँ कर सकता है। तो अभी हमारे इस जो 25 किसान ने किया था उनमें से 8-9 किसान इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ किसान का ऐसा हुआ कि वो पॉली कल्चर कर रहे हैं,
1: अच्छा।
0: मछली मछली को खाता है यानी कार्निवोरस जो फिशेज है उसके साथ झींगा पालन किया। झींगा केकड़ा ऐसा है कि इनका वो ऊपर का जो छिलका होता है वो
1: जी
0: 3.5-4 महीने में एक बार छोड़ता है, तो वो उस समय बॉडी उसका नरम रहता है। तो अगर कर्नीवोरस यानी मछली खाने वाला मछली अगर पॉन्ड में होगा तो वो पीरियड के दौरान वो खा जाता है, तो इसीलिए वो सब मछली जो मछली मछली को खाता है
1: खाता है।
0: उन मछली के साथ ये झींगा नहीं पाला जा सकता।
1: अच्छा।
0: रोहू कतला मृगल ये सब मछली मछली को खाते नहीं, इनके साथ वो कल्चर किया
1: वो
0: जा
1: एक ही
0: सकता
1: तालाब
0: है
1: में आप आराम से कर
0: जी।
1: सकते हैं।
0: तो ये है कि ऐसे किसानों को अभी प्रोत्साहित कर रहे हैं, अभी ये इस महीने के अंत तक जो है मेनलैंड से बच्चा आ जाएगा। हमने कैरी और फिशरीज के वैज्ञानिकों से बात की है, हो सकता है कि आगे चल के ये जो मीठे पानी का झींगा उनका जो है ब्रीडिंग यहीं कराने के लिए हम सोच रहे हैं, इसलिए डॉक्टर

0: चित्र रंजन जो है कैरी में साइंटिस्ट हैं और फिश फिशरीज डिवीज़न के हैं, उनसे बात की है तो
1: जी
0: वो एक्सपर्ट है इस पे। तो अभी केवल मादा झींगा जिसमें अंडा हुआ है ऐसे झींगा हमें कलेक्ट करना है और सर को चित्तरंजन डॉक्टर
1: देना
0: चित्तरंजन को देना है ताकि वो करके देखेंगे। अगर
1: जी
0: यहाँ
1: जी
0: क्योंकि एक छोटा बच्चा झींगा का वो 4.5 या 5 रुपये में मेनलैंड से लाना पड़ता है और मोर्टली भी ये ट्रांसपोर्टिंग के दौरान उसका मृत्यु दर जो है ज़्यादा हो जाता है। यहाँ अगर हम लोग कर सकते हैं तो ये बेहतर होगा। अभी रिसेंटली डॉक्टर पल्लवी सरकार हमारे सेक्रेटरी साहिबा ने
1: जी
0: हमें और भी ये किया कि छोलदरी के जो खेती जोन है इस जोन को जो है झींगा पालन के लिए, तो हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में जो टाइगर प्राउन है
1: जी जी जी
0: तो ये टाइगर प्राउन जो है हमारे अंडमान में अवेलेबल उनका सीड होता है। तो अभी ये हमारे यहाँ से 36 किसानों को फिर चुना गया कि अपने पौंड में जो है ये टाइगर झींगा का भी पालन करेंगे ताकि ये 6.5-7 महीने में ये फिर मार्केटिंग कर सकेंगे। तो
1: अच्छा
0: इनका अवेलेबल है सीड्स, तो बाकी प्रोसेस ये किसान कर रहे हैं और हम जो पुराने हैं झींगा पालन का तो हम लोग भी मदद कर पाएंगे। तो ये
1: बिल्कुल
0: आगे चल के यह होगा कि अंडमान निकोबार क्योंकि हमारे यहाँ अवेलेबल है
1: जी
0: टाइगर
1: जी
0: प्राउन का। अभी नमक पानी का जो खारे पानी का जो झींगा उसका तो 2-3 सेंटर में पाला जाता है लेकिन टाइगर प्राउन का किसी ने नहीं किया है। तो ये हमारा जो जोन है एरिया है वो इस कल्चर के लिए अच्छा है तो हम चाहेंगे कि किसान जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे क्योंकि
1: बिल्कुल
0: बहुत सारे ज़मीन जो है सुनामी के बाद स्टैगनेट पड़ा है जहाँ सलाइनिटी
1: उसका भी
0: है
1: उपयोग किया जा
0: उसका
1: सके।
0: सदुपयोग किया जा सके।
1: बिल्कुल, इस तरह से सरकार की ओर से, नाबार्ड की तरफ से कई एक प्लेटफॉर्म हैं किसानों के लिए जो मुहैया करवाई जाती है और किसान इसका भरपूर फायदा उठा रहे
0: जी
1: हैं। मधु जी, अब हम आते हैं आपके जो खेती बाड़ी के संदर्भ में, कि इन दिनों जो है 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत किसानों को बहुत कुछ जानकारी दी जा रही है, कई जगह ये आयोजन किए गए, आपने भी उस आयोजन में भाग लिया होगा, तो हमारे किसानों को थोड़ी जानकारी दीजिए कि इसका मकसद क्या है, इस अभियान के तहत क्या क्या बताया जाता है।
0: जी मैम, 6 तारीख को छोलदारी में कैरी और कृषि विभाग ने ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की थी
1: जी
0: खेती बचाओ अभियान। उसमें कैरी के साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट थे तो उनमें ये सारे किसानों को तो बुलाया गया है लेकिन एक तो ये मानसून का पीरियड है
1: जी जी
0: और शायद सैटरडे था तो किसान जो संडे मार्केट में अपना सब्जी वगैरह
1: सब्जी
0: लेके आए तो वो
1: वगैरह
0: शनिवार का दिन जो है वो भी बहुत बिजी था क्योंकि अगले दिन उसे सुबह मार्केट
1: जी
0: आना है तो इसलिए
1: जी
0: किसान का भागीदारी उस दिन कम था। तो वैसे हमने तो अब जब से होश संभाली तब से देखा कि जैविक खेती पहले होती थी उसके बाद एक दौर आया ग्रीन रेवोल्यूशन के दौर आया। उस दौर में जो है सरकार की तरफ से DAP यूरिया फॉस्फेट तो ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो है वो किसानों को फ्री में बांटा गया। तो उससे क्या हुआ कि किसान जो है खुले तौर पे अपने हिसाब से वो खेती देते रहे। उसके बाद एक दौर आया मुख्य भूमि से जो किसान यानी आपका लेबर्स कुछ
1: जी
0: ऐसे हैं कि दूसरों के खेती लीज में लेके खेत सब्जी करना शुरू किया खेती बाड़ी करना शुरू किया। तो ये जो है ज़्यादा उपज के लिए बहुत मात्रा में DAP यूरिया म्यूरेट ऑफ पोटास ये सारा जो है खेती में देना शुरू किया। उसके बाद जो है हमारा घास मारने की दवाई वगैरह इसका छिड़कना शुरू किया। तो ये एक समय आके अभी प्रेजेंट पोजीशन जो है वो बिना उसका जो है खेती बाड़ी करना ही ऐसा। अब ये खेती बचाओ अभियान के तहत किसानों को ये समझाया जा रहा है खेती का जो मिट्टी में अभी है ही नहीं कुछ। अभी ये जो गल्फ वॉर के दौरान जो है हम भारत में उतना तो ये केमिकल फर्टिलाइजर बनता ही नहीं है
1: जी
0: हमारे हमें विदेशों से मंगवाना
1: मंगाया
0: पड़ता है।
1: जाता है।
0: अब ये गल्फ वॉर के पीछे जो है ये लाना मंगवाना मुश्किल है और इसका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट अभी बहुत बढ़ गया है पेट्रोलियम का डीजल का ये सारे तो इसमें जो है बहुत महंगा हो जाएगा किसानों को मुश्किल होगा। तो सरकार का ये प्लान बहुत पहले से ही चल रहा है पिछले 10-12 साल से चल रहा है कि जैविक खेती करने के लिए। तो इसीलिए किसानों को अपना जो खाद बनाने की प्रक्रिया ये समझाया गया सिखाया गया
1: जी
0: तो किसानों को अभी भी इस खेत बचाओ अभियान के दौरान ये समझाया जाता है कि आप खेती बाड़ी करो और ये प्राकृतिक और जैविक खाद से जो है ये खेती बाड़ी करो तो इससे उपज थोड़ा सा थोड़ा दिन कम रहेगा लेकिन जब मिट्टी का सुधार हो जाएगा उस
1: जी
0: समय जो है ये
1: ठीक हो जाएगा
0: ठीक
1: वो,
0: हो जाएगा।
1: क्योंकि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के
0: जी
1: लिए पहले खेत की मिट्टी को ही ठीक करना
0: जी
1: होगा, यही किसानों को समझाया जा रहा है।
0: एक बात और था कि हमारे यहाँ 2004 का जो सुनामी था
1: जी
0: सुनामी में बहुत सारे निचला जमीन समुद्र के किनारे क्योंकि

0: सारे सेटलमेंट अंडमान निकोबार में मैक्सिमम ऐसे ही समुद्र किनारे पहले बसाया गया था, बाद में कुछ कुछ जो है ऊंचे जगह में सेटलमेंट हुआ है।
1: जी
0: तो अब ये हुआ कि सुनामी के बाद जो खेती समुद्र किनारे वाले निचले जमीन का जो, तो जब सेटलमेंट हुआ था उस समय बरसात का पानी, बारिश का पानी निकालने के लिए जल निकासी का एक जरिया था स्लुइस गेट। तो सुनामी के बाद ये सारे स्लुइस गेट, जैसे हमारे बम्बू फ्लैट का वो
1: जी
0: कन्याबुरम, ये सारे ले लें, सारे खेती खराब हो चुके हैं, मिठाकारी, छोलदारी, सीपी घाट, ये सारे जमीन जो है ऐसे निचले जो समुद्र किनारे, तो ये सब में स्लुइस गेट लगा हुआ था। तो ये सारे स्लुइस गेट जो है वो खराब हो चुके हैं, और कुछ कुछ सुनामी के बाद रिपेयर किया गया है, लेकिन वहाँ थोड़ा इतना ऊंचा किया गया है कि खेती का पानी सारा वो निकलता नहीं है कैरी में। इस खेत बचाओ अभियान का एक और प्रोग्राम हुआ है, उसमें भी सारे PRI मेंबर्स को, सरपंचों को
1: जी
0: और प्रगतिशील किसानों को बुलाया गया था, मैं मेरा भी भागीदारी उसमें था। तो उसमें भी यही चीज़ बताया गया और किसानों से और PRI मेंबर से पूछा गया कि अपने अपने इलाके में कौन कौन सा ये मूलभूत आधार यानी व्यवस्था नहीं है,
1: जी जी
0: और क्या क्या
1: क्या
0: और करने
1: चीज
0: से अच्छा होगा।
1: जी
0: तो उसमें फिर यही बात उठाया गया कि ऐसे हैं खेती का जो पानी वो निकासी का थोड़ा सा व्यवस्था सरकार कर ले तो ये किसानों के लिए बेहतर होगा।
1: यानी कार्य तो बहुत कुछ किए जा रहे हैं। मधु जी, आप एक किसान होने के नाते अपने क्षेत्र में आप खुद जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, काफ़ी जगह आप विजिट करते हैं, जैसे आपने कहा केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी आपका योगदान है, तो आप क्या पाते हैं कि हमारे जो किसान हैं, सिर्फ छोलदारी के नहीं, तमाम मिडिल अंडमान या नॉर्थ, वो किसान जागरूक हैं, इस जो प्रोग्राम किए जाते हैं जगह जगह इस पे वो आते हैं?
0: हाँ मैडम, आते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कि वर्तमान समय में
1: जी
0: हमारे जो यंग जनरेशन है उनका खेती बाड़ी से लगाव कम है,
1: अच्छा
0: तो अब अभिभावक हम लोग जितने हैं पूरे द्वीप समूह में, अभिभावकों को यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को भी थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, कुछ नहीं है कि सारे एडुकेटेड बच्चों को नौकरी,
1: नौकरी मिल
0: सरकारी
1: सके।
0: नौकरी दिया जा सके। तो हमारे जो परिवार में बच्चे हैं उनको थोड़ा सा खेती बाड़ी की ओर प्रोत्साहित करना पड़ेगा, इसके लिए सरकार प्रचेष्टा कर रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन थोड़ा सा जमीन सीमित हो गया है और ट्रांसफ़र जमीन का यानी पैडी लैंड को कन्वर्शन हो रहा है।
1: कन्वर्शन हो रहा
0: तो
1: है।
0: ये थोड़ा सा अगर सरकार इसमें थोड़ा सा ध्यान दे, तो क्योंकि जो बच्चे आज युवा हैं, युवा
1: जी
0: पीढ़ी खेती बाड़ी के जाएगा, उसके पास अगर ज़मीन ही रहेगा नहीं तो खेती बाड़ी के तौर पे उनका अट्रैक्शन कहाँ से रहेगा। तो दोनों चाहिए, परिवार के लोगों, बड़े बूढ़े जो भी हैं
1: जी
0: उनको, बच्चों को प्रोत्साहित करना है और सरकार को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए। तो सरकार दे रही है लेकिन उतना असर नहीं पड़ रहा है। तो मेरा यह अनुरोध रहेगा कि हर परिवार में, परिवार के वयोवृद्धजन अगर बच्चों को प्रोत्साहित करे खेती बाड़ी की ओर,
1: जी
0: तो वो जो है हमें आगे चल के काफ़ी हितकारी लाभ।
1: मधु जी, इस माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि सरकार की क्या मदद की आप गुहार लगा रहे हैं?
0: यह है कि बाकी तो सभी कुछ चल रहा है इस अभियान के तौर पर और सरकार वर्तमान समय में अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो ये रहेगा कि थोड़ा सा कई तरह से किसानों को मदद दिया जा रहा है,
1: जी
0: लेकिन मुझे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन केवल नहीं क्योंकि लोन फैसिलिटीज़ में इसमें है, तो उसका एक लिमिट पहले भी था और अभी भी है, 1 लाख रुपया। तो
1: अच्छा
0: सरकार एक बीच में अनाउंसमेंट की थी कि इसको बढ़ाकर 3 लाख किया जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, 7.5 बीघा ज़मीन है, तो
1: जी
0: मुझे भी 1 लाख मिलेगा, और जिसके पास 20 बीघा है या 50 बीघा है उनको भी 1 लाख मिलेगा। तो इसका सीमा को और थोड़ा
1: बढ़ाया
0: बढ़ाया जाए
1: जाए।
0: तो थोड़ा सा किसान को जो है सुविधा होगी, क्योंकि युवा पीढ़ी को भी अगर सामने लाना है तो इम्प्लीमेंट्स, खेती बाड़ी करने के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे सामान औजार चाहिए, तो वो सब खरीदने के लिए, सब काम करने के लिए। और ये जैविक खाद का तो चल ही रहा है
1: जी
0: प्रोसेस, हमें रिंग वेल बनाना है, उसमें मिट्टी भरना है, गोबर देना है, केंचुआ डालना है जैविक खाद वगैरह बनाने के, इसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये सरकार अगर ये जो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो सीमा है उस सीमा को थोड़ा सा बढ़ा दे
1: बढ़ाया जाए।
0: तो वो अच्छा है।
1: उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो खेती बाड़ी से हटते जा रहे हैं?

0: कहूंगा कि उनके पास इसकी जानकारी है,
1: जी
0: लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा है कि थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि इस तरह किया जाए, क्योंकि बचपन से ही, अभी वर्तमान समय में हम लोग बच्चों को थोड़ा सा पानी में भीगने देना, मिट्टी में
1: जी
0: जाना,
1: जी
0: खेत
1: जी
0: जाना के लिए पेरेंट्स ही मना करते
1: हम
0: हैं
1: भी कहीं जिम्मेदार हैं,
0: जी, हम भी कहीं जिम्मेदार हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये चीज़ है कि बच्चे सीख रहे हैं, सब कुछ है, और शिक्षा क्षेत्र में बाकी विषयों तो जैसे होता है, मैं खुद शिक्षक रहा
1: जी
0: और 39 ईयर्स जो है सर्विस दिया।
1: जी जी
0: हमारे यहाँ कुछ व्यवस्था ऐसा नहीं है कि शिक्षा संस्थानों में कृषि से संबंधित कुछ, कहीं दो एक सेकेंडरी नियर सेकेंडरी स्कूल में एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट होता है और वो नाम कास्ट है। तो अगर
1: अच्छा
0: इस विषय को जो है शिक्षा प्रतिष्ठान में अगर कंपलसरी कर दिया जाए
1: तो बहुत अच्छा
0: तो
1: होगा,
0: बहुत अच्छा होगा।
1: यानी शुरू से बच्चे
0: जी
1: उस ओर
0: जी
1: अग्रसर होंगे तो उनका भी ध्यान इस ओर लगेगा।
0: जी
1: बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने, और खेत बचाओ अभियान पर भी आपने अच्छी जानकारी दी। आज आप कार्यक्रम में आए और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मधु जी हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
0: धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने श्री धीरेंद्र नाथ मधु जी से की गई बातचीत सुनी, जिसमें वे खेत बचाओ अभियान से जुड़े अपने विचार साझा कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपने बातचीत के माध्यम से कई बातें जानी होंगी। अब आइए आपको जानकारी दे दें, जानकारी का विषय है ऊसर भूमि का सुधार। किसान भाइयों, आज हम बातें करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, ऊसर भूमि का सुधार। हमारे देश में बड़ी मात्रा में भूमि ऐसी है जहां खेती करना कठिन हो जाता है। इसका कारण है मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और अन्य लवणों की अधिकता, जिससे मिट्टी का पीएच बढ़कर 8.2 से ऊपर पहुँच जाता है। ऐसी भूमि को हम क्षारीय या क्षारीय भूमि भी कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में पौधों की जड़ें ठीक से काम नहीं कर पाती, पानी का रिसाव कम हो जाता है और फसलें कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन किसान भाइयों, चिंता की कोई बात नहीं, सही तकनीक अपनाकर ऐसी भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जैविक सुधार विधि की। यह विधि प्राकृतिक है और खर्च भी कम आता है, लेकिन इसमें समय थोड़ा अधिक लगता है। इस विधि में शुरुआत में देशी बबूल, विलायती बबूल, नीम जैसे वृक्ष लगाए जाते हैं। इनके साथ साथ पारा घास जैसे सहनशील घासें भी उगाई जाती हैं। जब मिट्टी में थोड़ा सुधार दिखने लगता है, तब धैचा की हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऊसर सहनशील फसलें जैसे धान लगातार कुछ वर्षों तक उगाई जाती है। धीरे धीरे मिट्टी की संरचना बदलने लगती है और भूमि खेती योग्य बन जाती है। अब बात करते हैं रासायनिक सुधार विधि की, जो अपेक्षाकृत तेज परिणाम देती है। इस विधि में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है जिप्सम का, जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। जिप्सम की शुद्धता कम से कम 70% होनी चाहिए। जिप्सम मिट्टी में मौजूद सोडियम को कैल्शियम से बदल देता है, जिससे मिट्टी की संरचना सुधरती है और पानी का रिसाव बढ़ता है। सामान्यतः 3 से 4 वर्षों में भूमि में अच्छा सुधार दिखाई देने लगता है। हालांकि यह मिट्टी की क्षारीयता पर निर्भर करता है। जिप्सम डालने से पहले खेत को अच्छी तरह समतल करना आवश्यक है। चारों ओर 35 से 40 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बनानी चाहिए, ताकि पानी खेत में रुका रहे। अतिरिक्त वर्षा जल निकालने के लिए उचित नालियां भी बनानी चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि सुधार प्रक्रिया में पानी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुधार शुरू करने से पहले मिट्टी का नमूना प्रयोगशाला में जांच कराना जरूरी है। इससे यह पता चलता है कि खेत में कितनी मात्रा में जिप्सम डालना है। जिप्सम को बारीक चूर्ण के रूप में जून के पहले सप्ताह में खेत में डालें और मिट्टी की सतह से लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करके अच्छी तरह मिला दें। इसके बाद खेत में पानी भर दें और 10 से 15 दिनों तक पानी भरा रहने दें। जब खेत तैयार हो जाए, तब धान की 45 से 40 दिन पुरानी पौध की रोपाई की जा सकती है। ऊसर भूमि में रोपाई थोड़ी घनी की जाती है, लगभग

लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रत्येक स्थान पर 3 से 4 पौधे लगाए जाते हैं और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। सुधार के शुरुआती वर्षों में ऐसी धान की किस्में लगानी चाहिए जो क्षारीयता को सहन कर सके। भूमि सुधार के पहले 4 से 5 वर्षों तक फसलों को फॉस्फोरस और पोटाश की आवश्यकता बहुत कम होती है। खेत में अनावश्यक पानी लंबे समय तक खड़ा न रहने दें, क्योंकि इससे मिट्टी फिर से खराब हो जाती है। किसान भाइयों, यदि इन विधियों को सही तरीके से अपनाया जाए तो बंजर और अनुपजाऊ दिखने वाली ऊसर भूमि भी कुछ ही वर्षों में हरी भरी और उपजाऊ बन सकती है। धैर्य, सही तकनीक और नियमित देखभाल, यही ऊसर भूमि सुधार की कुंजी है। अभी आप जानकारी सुन रहे थे, जानकारी का विषय था ऊसर भूमि का सुधार। किसान भाइयों, योग आसन करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आइए गतिशीलता और संतुलन के लिए योग कैसे लाभकारी है ये जानते हैं।

किसान साथियों, आज हम बातें करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे शरीर की हर गतिविधि से जुड़ा है, गतिशीलता और संतुलन, और इन्हें मजबूत बनाने में योग की अद्भुत भूमिका होती है। हमारा शरीर तभी सुचारू रूप से काम करता है जब उसमें लचीलापन हो, गति हो और संतुलन हो। खेतों में काम करते समय, घर गृहस्थी संभालते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय या रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में भी हमारा संतुलन और गतिशीलता ही हमें सुरक्षित और सक्षम बनाए रखते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने, गलत आदतों, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण शरीर धीरे धीरे कठोर होने लगता है, चाल धीमी पड़ने लगती है और संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसे में योग एक ऐसा साधन है जो शरीर को फिर से सक्रिय, लचीला और संतुलित बना देता है। योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं है, यह शरीर और मन को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। जब हम योग करते हैं तो शरीर की मांसपेशियां खुलती हैं, जोड़ों में जकड़न कम होती है और शरीर का प्राकृतिक संतुलन वापस आने लगता है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर की चाल में हल्कापन आता है, कदम स्थिर होते हैं और गिरने फिसलने का खतरा कम हो जाता है। कई आसन ऐसे हैं जो विशेष रूप से संतुलन को मजबूत करते हैं, जैसे पैर पर खड़े होकर किया जाने वाला वृक्षासन, जो मन को स्थिर करता है और पैरों की पकड़ को मजबूत बनाता है। ताड़ासन शरीर को सीधा, संतुलित और केंद्रित रखता है। त्रिकोणासन और अर्धचंद्रासन जैसे आसन शरीर के दोनों ओर समान खिंचाव देते हैं, जिससे चाल में लचक आती है और गति सहज हो जाती है। योग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सांस। जब हम गहरी और नियंत्रित सांस लेते हैं तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, मन शांत होता है और संतुलन अपने आप बेहतर होने लगता है। प्राणायाम मन को स्थिर करता है और मन जितना स्थिर होगा, शरीर का संतुलन उतना ही मजबूत होगा। किसान भाइयों और बहनों, योग का सबसे बड़ा लाभ है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे उम्र कितनी भी हो। बस शुरुआत धीरे धीरे करें, शरीर को जोर न दें और नियमितता बनाए रखें। सुबह का समय योग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि सुबह संभव न हो तो दिन के किसी भी शांत समय में इसे किया जा सकता है।

अभी आप जानकारी सुन रहे थे जिसका विषय था गतिशीलता और संतुलन के लिए योग। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न कुछ इस प्रकार था, झुलसा रोग यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति प्रतिरोध की क्षमता वाली धान की किस्में कौन कौन सी हैं? और इस प्रश्न का उत्तर है, झुलसा रोग यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति प्रतिरोध की क्षमता वाली धान की किस्में हैं कैरी धान 6 और कैरी धान 7। उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात की जानकारी थी और यदि नहीं तो आपने प्रश्न उत्तर के माध्यम

जानकारी हासिल कर ली होगी। किसान भाइयों, अब हमारी विदा लेने का समय हो चुका है। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत श्री धीरेन्द्र नाथ मधु से खेत बचाओ अभियान पर बातचीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम समाचार तरंगिणी।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगिणी। इस अंक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में द्वीप समूह में कार्यक्रमों का आयोजन, योग दिवस और स्थापना दिवस।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। द्वीप समूह में भी कृषि विभाग की ओर से प्रधानमंत्री द्वारा इस 23वीं किस्त को जारी किए जाने के सीधे प्रसारण के लिए सभी ब्लॉकों और विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें 1230 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान इन द्वीपों के पात्र किसानों को 2.5992 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। पीएम किसान योजना की शुरुआत से लेकर अब तक द्वीप समूह के किसानों को कुल 64.48 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कृषि विज्ञान केंद्रों और कैरी क्षेत्रीय स्टेशन मिनीकॉय के साथ पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को टिकाऊ कृषि के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई, जिनमें संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, वर्मी कम्पोस्टिंग, जैव उर्वरकों से बीज उपचार, वैज्ञानिक धान की खेती के तरीके, एकीकृत कीट प्रबंधन और जैविक व प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपनाना शामिल था। कार्यक्रम में पीएम किसान योजना के उद्देश्यों और लाभों को रेखांकित किया गया, साथ ही खेत बचाओ अभियान के मुख्य संदेशों को बढ़ावा दिया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री विजयपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने संबोधन में कहा कि अंडमान निकोबार को देश के दूरस्थ हिस्से के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले वर्षों में कनेक्टिविटी और विकास कार्यों के माध्यम से इस सोच में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि जनधन आधार और मोबाइल के एकीकरण से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है और शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनी है। श्री रिजिजू ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है।
1: इतना बड़ा राष्ट्र, इतना पुराना हमारा इतिहास, हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री हजारों साल पुराना, ये जो 200-300 साल पुराने देश बने हैं वो अभी राष्ट्र बन गए और भारत जो है गरीब राष्ट्र बन के नहीं है, ये हम मंजूर नहीं हो सकते हैं। सीधा सीधी एक लक्ष्य खींच लिया कि 2047 जब आजादी का 100 साल पूरा होगा तो भारत को विकसित होना ही है, और जब टारगेट सेट करने के बाद हम लोगों ने पूरा ताकत झोंक दिया और ताकत झोंकने के साथ साथ हमने ये कहा ये सिर्फ सरकार अकेला नहीं कर सकता है, इसमें पूरा भारत का हर एक नागरिक को जुड़ना होगा। काम तो सबको मिलकर करना है, सरकार ने तो जिम्मेदारी दिया है, जनता सेवा के लिए टाइम तो दिया है, तो हम मिलकर ही काम करना है।
0: उन्होंने अंडमान निकोबार में चल रही विकास परियोजनाओं तथा नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी सराहना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि पार्टी ने संगठन के विस्तार और जनसेवा के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। अंडमान निकोबार में बुनियादी ढांचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि द्वीप समूह में

ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, बंदरगाह और अन्य विकास कार्यों से नए अवसर सृजित हुए हैं। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों, महिला प्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों तथा विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। द्वीप समूह में केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि योग क्षेत्रों, संस्कृति और समुदायों के लोगों को आपस में जोड़ने वाली एक शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने सभी से शारीरिक कल्याण, मानसिक शांति और समग्र विकास हासिल करने के लिए योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में द्वीपों के उपराज्यपाल, सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी, मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। योग सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री और उपराज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए एक माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में योग प्रेमियों, सरकारी अधिकारियों और आम जनता ने भाग लिया। इस बीच कृषि निदेशालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें कृषि निदेशक देवव्रत बसंतिया, विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास किए, जो शारीरिक फिटनेस, मानसिक कल्याण और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देने में योग के महत्व को रेखांकित करता है। इस अवसर पर कृषि निदेशक ने योग को दैनिक जीवन में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर भी योगाभ्यास किया गया। उधर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्ली ग्राउंड में जिला स्वास्थ्य समिति तथा राज्य आयुष सोसाइटी के सहयोग से पीएम श्री GSSS स्वदेश नगर में स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय के साथ 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रमुख शिवानी मजुमदार मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर वृक्षासन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया तथा क्षय रोग के प्रति जागरूकता व्याख्यान भी आयोजित किया गया। द्वीप समूह के विभिन्न भागों में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंडमान निकोबार कमान की ओर से त्रि सेवा, संयुक्तता और समग्र कल्याण की भावना को दर्शाते हुए परिचालन अड्डों, वायु स्टेशनों, नौसेना प्रतिष्ठानों, तटरक्षक इकाइयों और जहाजों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम श्री विजयपुरम में आयोजित किया गया था, जहां कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अजय फिरोज शाह ने भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल के कर्मियों, नागरिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के साथ सामान्य योग कार्यक्रम में भाग लिया। अंडमान निकोबार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितोब्रतो कुमार मित्रा की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, स्टाफ सदस्यों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने भाग लिया। योग सत्र का संचालन योग प्रशिक्षक डॉक्टर एन सेरा अरासन के मार्गदर्शन में किया गया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में योगाभ्यास संचालित किया गया। निकोबार जिले में भी स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग विषय के तहत 5 अलग अलग स्थानों पर योगाभ्यास किया गया। जिला स्तरीय सामूहिक योग प्रदर्शन का आयोजन कार निकोबार के मलाका जट्टी में किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निकोबार जिला पुलिस अधीक्षक एल राहुल नायर उपस्थित थे। इस अवसर पर सहायक आयुक्त डॉक्टर नवीन कुमार ने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। इसी तरह के योग संगम कार्यक्रम ननकौड़ी, कैमल बे, कछाल और तरेसा में संबंधित सहायक आयुक्तों और चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों की देखरेख में आयोजित किए गए। इसके अलावा योगाभ्यास को निरंतर बनाए रखने के लिए BJR अस्पताल में 1 जुलाई से आम जनता के लिए दैनिक योग कक्षाएं शुरू की जाएंगी। अंडमान निकोबार प्रशासन को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्लाक ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन और पासपोर्ट सेवा दिवस 2026 के दौरान दिया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2025-26 के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों को पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने में प्रशासन के उच्च स्तर की सेवा, प्रतिबद्धता और सुशासन में योगदान के सम्मान में दिया गया है। यह राष्ट्रीय मान्यता अंडमान निकोबार प्रशासन, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, डाक सेवाओं और सभी हितधारकों के समर्पित प्रयासों को दर्शाती है। इसके अलावा द्वीपवासियों के लिए

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और पर्यटन के अवसरों को आसान बनाने में पासपोर्ट सेवाओं के बढ़ते महत्व को भी दर्शाता है। पर्यटन विभाग सभी संबद्ध विभागों के सहयोग से 26 से 28 जून तक प्रदर्शनी मैदान में मॉनसून फूड एंड स्पाइस फेस्ट आयोजित कर रहा है। इसके साथ ही कार्वेंस कोप समुद्र तट में बीच स्पोर्ट्स भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक होटल व्यवसायी, रेस्तरां मालिक, खाद्य विक्रेता, स्वयं सहायता समूह और व्यक्तिगत प्रतिभागी थीम आधारित वस्तुओं की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए जगह आरक्षित कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों और राज्य स्तर के संघों को शुल्क स्थान प्रदान किया जाएगा। इस उत्सव का उद्देश्य द्वीप समूह को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय उद्यमों के लिए स्थायी आजीविका एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। महोत्सव के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाएंगे और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति पर्यटन विभाग के ईमेल के माध्यम से अपना विवरण साझा कर सकते हैं। स्टॉल के लिए आवेदन पत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम का 49वां स्थापना दिवस संस्थान के डॉक्टर टी आर दत्ता सम्मेलन कक्ष में हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अंडमान निकोबार प्रशासन की कृषि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं तथा मत्स्य विभाग की सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही, जबकि नबार्ड के महाप्रबंधक ए विजय पांडियन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर जयसुंदर ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए संस्थान की गतिविधियों एवं भावी योजनाओं का विस्तृत अवलोकन कराया। स्थापना दिवस व्याख्यान ICAR नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर ए के नायक द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया तथा संस्थान के कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए प्रशंसा की गई। इस अवसर पर संस्थान के प्रकाशनों का भी विमोचन किया गया। विशिष्ट अतिथि के विजय पांडियन ने अपने संबोधन में कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संस्थान की भूमिका की सराहना की। मुख्य अतिथि पल्लवी सरकार ने अपने संबोधन में द्वीप समूह में कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य क्षेत्र के विकास में संस्थान के योगदान का उल्लेख किया। कार्यक्रम के अंत में स्थापना दिवस समारोह के समन्वयक डॉक्टर टी सुजाता ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2026 के उपलक्ष्य में अंडमान एवं निकोबार NCC के कैडेट्स ने श्री विजयपुरम स्थित हाइड्रोग्राफिक सर्वे यूनिट का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस अवसर पर कैडेट्स को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समुद्री सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। भ्रमण के दौरान कैडेट्स को आधुनिक हाइड्रोग्राफिक सर्वे उपकरणों, डिजिटल चार्टिंग तकनीकों तथा सुरक्षित नौवहन को समर्थन देने में हाइड्रोग्राफिक सर्वे यूनिट की भूमिका से अवगत कराया गया। विशेषज्ञों द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव प्रस्तुतियां और व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से कैडेट्स को नौसेना की हाइड्रोग्राफिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उन्हें समुद्री क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न करियर अवसरों की भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न करियर अवसरों की भी विस्तृत जानकारी दी गई और कैडेट्स के समुद्री मामलों संबंधी ज्ञान को वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय समुद्री विकास में हाइड्रोग्राफी के महत्व का उल्लेख किया गया। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर रियाज फारूक ने उपयोगी और प्रेरणादायक जानकारी के लिए नेवल कंपोनेंट कमांडर कमोडोर नितेश गर्ग और प्रभारी अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर भास्कर चक्रवर्ती का आभार जताया। मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फरारगंज विकास खंड के वृंदावन गांव में खेत बचाओ अभियान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पूजा वोहरा ने की। अपने संबोधन में उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग से कृषि भूमि की घटती उत्पादकता पर चिंता व्यक्त करते हुए हरित खाद के उपयोग पर बल दिया। वैज्ञानिक चित्रंजन राउल ने धान की खेती में उर्वरक एजोला के उपयोग पर तकनीकी व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के दौरान नारियल बागानों में मिलीबग की समस्या के प्रभाव नियंत्रण हेतु नीम तेल के उपयोग का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में गांव के लगभग 20 किसानों ने भाग लिया। इसके साथ ही समाचार तरंगणी का ये अंक

समाप्त हुआ। समाचार तरंगनी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका अनीता क्रिकेट्टा, संपादक और प्रस्तुतकर्ता अंकित कुलश्रेष्ठ।

श्रोताओं, अभी आप समाचार तरंगनी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार श्रोताओं, लम्हे में आपका स्वागत है। आपका मेजबान हूँ मैं चेतन, और आज हम इस विषय पर अंतर्दृष्टि डाल रहे हैं।

नमस्कार श्रोताओं, लम्हे में आपका स्वागत है। आपका मेजबान हूँ मैं चेतन, और आज हम इस विषय पर अंतर्दृष्टि डाल रहे हैं जो हर माता पिता के दिल के करीब है, बच्चों में लचीलेपन का निर्माण। तो चाहे आप बच्चों को लेने जा रहे हो या शांति के पल का आनंद ले रहे हैं, आइए उन तरीकों का पता लगाएं जिनसे हम अपने नन्हे मुन्ने में लचीलापन पैदा कर सकते हैं। बिल्डिंग रेजिलियंस इन चिल्ड्रन। महामारी हम सभी के लिए बहुत कठिन रही है, लेकिन साथ ही ये अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण सीख भी लेकर आई है, विशेष रूप से बच्चे और युवा वयस्कों के लिए। मेरा मानना है कि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दैनिक जीवन में लचीलापन यानी रेजिलियंस बनाने और अभ्यास करने की आवश्यकता है। माता पिता के रूप में हमारे लिए चुनौती ये है कि हम उन्हें ऐसा करने में कैसा मदद कर सकते हैं। तो लचीलापन है क्या? कठिन परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी आशावाद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है। यह हर बार सफलतापूर्वक वापसी करने की क्षमता है। ये एक मानसिकता है। इस बारे में सोचें कि कैसे एक सरल बनाना चाहते हैं, तो एक फ्लोट पानी के नीचे धकेलने पर हमेशा सतह पर वापस आ जाता है। अपने दैनिक जीवन में बच्चे घर और बाहर दोनों जगह बहुत सारे अलग अलग तनाव से गुजरते हैं। खेल के मैदान में बदमाशी, किसी पसंदीदा शिक्षक या मित्र का दूर चले जाना, साथियों का दबाव, या बस बड़े होने के दौरान होने वाले साधारण बदलाव, ये सभी भले ही हमें मामूली लगे, हमारे लिए गंभीर उथल पुथल का कारण बन सकते हैं। अपने सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद हम उन्हें इन उथल पुथल और तनाव से पूरी तरह से नहीं बचा सकते, लेकिन हम उन्हें अधिक लचीले होने सिखा सकते हैं, उन्हें सही दृष्टिकोण और कौशल से लैस करा सकते हैं। तो एक कोट याद आ गया दोस्तों, अगर चीजें घटित होने लगती है तो चिंता मत करो, चुप मत रहो, बस ठीक से चलते रहो और तुम भी घटित होने लगोगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही है या वे अप्रत्याशित रूप से घटित हो तो थोड़ा रुके, दुखी हो या न हो एक या दो तकिया पर मुक्का मार, खुद को संभाल और काम शुरू करो। हम एक तरफ सुरक्षात्मक अनुभव और मुकाबला करने के कौशल और दूसरी तरफ प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ लचीलेपन की कल्पना कर सकते हैं। जब सुरक्षात्मक कारकों के प्रभाव प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव से अधिक हो जाते हैं तो बच्चे लचीले हो जाते हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, लचीलेपन बनाने के कई मॉडल्स हैं। कनेक्शन का अर्थ परिवार, दोस्त और समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध रखना है। जिन बच्चों में लचीलापन विकसित होता है उनके लिए सबसे आम कारक माता पिता, देखभाल करने वाले या अन्य वयस्कों के साथ कम से कम एक स्थिर और प्रतिबद्ध रिश्ता है। मजबूत संबंधों से सुरक्षा, अपनेपन की मजबूत भावना पैदा होती है और बच्चों के विकास संबंधी व्यवधानों से बचाया जाता है। बच्चों और वयस्कों के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करना महत्वपूर्ण है। ये भावनाओं की योजना बनाता है, निगरानी करने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता में मदद करता है। किसी बच्चे को रोने से कभी न रोके। रोना एक बहुत अच्छा निकास तंत्र है। जब कोई बच्चा रो रहा होता तो कभी परेशान न हो, स्वीकार करे कि आप रो रहे हो। हाँ कहे, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें रोना आ रहा है। जब आपका रोना खत्म हो जाए तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। बच्चे को रोने से न रोके। आप प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में सक्षम नहीं होने के कारण बच्चों के लिए और अधिक समस्याएं पैदा करेंगे। जिन बच्चों को अपनी भावनाओं का व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उनमें मजबूत भावनात्मक बंधन विकसित होता है और वैकल्पिक विनाशकारी व्यवहारों की तलाश करने के बजाय मार्गदर्शन लेने और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए उनकी

सहायता प्रणाली की ओर रुख करने की अधिक संभावनाएं होती है। सहायक रिश्ते, अनुकूली कौशल निर्माण और सकारात्मक अनुभवों का ये संयोजन लचीलेपन की नींव है। योग्यता तनावपूर्ण स्थितियों का प्रभावी ढंग से संभालने की क्षमता है। जब हमारे बच्चे हमारे पास समस्याएं लेकर आते हैं तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति उनकी समस्याओं का समाधान करने की होती है। एक बेहतर रणनीति ये होगी कि समाधानों पर विचार मंथन किया जाए, प्रश्नों को दोबारा उन पर उछला गया और पेशेवर और विपक्षों या सामूहिक रूप से विभिन्न समाधानों की एक सूची तैयार की जाए। माता पिता के रूप में हम उनसे मुद्दे पर सोचने में मदद करें। जब बच्चे कुछ सही करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विशिष्ट कौशल विकसित करने के अवसर दिए जाना चाहिए। आत्मविश्वास किसी की क्षमताओं में विश्वास है और दृढ़ता से क्षमता में निहित है। वास्तविक जीवन की स्थितियों में योग्यता प्रदर्शन करके हम आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। बच्चों को उन लक्ष्यों के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें जिन्हें वे सोचते हैं कि वे हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो उनके वर्तमान स्तर पर थोड़ा है। बच्चों को न केवल उनकी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करें बल्कि उनकी दयालुता, सत्यनिष्ठा, दृढ़ता और निष्पक्षता के लिए भी उनकी सराहना करें। बच्चों को स्वयं जोखिम लेने और उनके आराम क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति देना भी महत्वपूर्ण है। इनसे उन्हें नई चीजें आजमाने, नए कौशल हासिल करने और चुनौतियों से पार पाने की आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलती है। चरित्र का अर्थ एक नैतिक दिशा निर्देशक का होना, सही और गलत की एक मजबूत समझ अच्छे चरित्र का निर्माण करने में मदद करती है। परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण और दूसरों की देखभाल करने से चरित्र का निर्माण होता है और ये बदले में हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। पंचतंत्र की उन कहानियों के बारे में सोचें जो हमें स्कूल में नैतिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाई जाती थी। जानवरों के साम्राज्य की कहानियां, जहां सही और गलत के बीच के अंतर बहुत स्पष्ट था और हमने लचीलेपन और दूसरों की देखभाल के बारे में सीखा। बच्चों से इस बारे में बात करने का उनका व्यवहार दूसरों को कैसे प्रभावित करता है, उन्हें तात्कालिक संतुष्टि या स्वार्थी इच्छाओं से परे देखने में मदद करना और दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचना या सभी चरित्रों का निर्माण करता है। एक मिशन उद्देश्य की भावना होने के शक्तिशाली भावना है। योगदान करने में सक्षम होना और यह जानना कि उनकी योगदान मायने रखता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है, बच्चों को उपलब्धि का भावना देती है। ये पर्यावरण के प्रति स्वयं सेवा कार्य, किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी उद्देश्य के प्रति समय और ऊर्जा के साथ उदार होने हो सकता है। ये सब लचीलापन पैदा करता है। जब मेरा बच्चा उदास महसूस करता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि वह अपनी बाल्टी भरने के लिए क्या कर सकती है। यह उसकी ऊर्जा को हमारे, उसके माता पिता या उसके दोस्तों के प्रति एक विचारशीली कार्य या देखभाल के भाव में निर्देशित करता है। इस तरह से योगदान करने में सक्षम होना हमेशा अद्भुत काम करता है और ऐसा उसके सकारात्मक स्वरूप में वापस लाता है। अच्छी खबर यह है कि लचीलापन एक व्यक्तिगत गुण और कौशल दोनों है। ये एक मांसपेशी की तरह है जो अभ्यास से मजबूत हो जाती है और माता पिता को लचीलापन बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने की जरूरत है। सभी बच्चों को मार्गदर्शन और समर्थन के लिए देखभाल करने वाले वयस्कों की आवश्यकता होती है और सबसे अच्छा शुरुआती बिंदु घर है। एक सहायक वयस्क बाल संबंध लचीलापन विकसित करने की नींव है। तो दोस्तों, यह था आज का लम्हे प्रोग्राम। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 6:55 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:15 पर सुनिए मौसम, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवावाणी कार्यक्रम का समय होगा 7:30, जिसके अंतर्गत होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा। रात्रि 8:00 कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार व गौरवगान। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं का समय रहेगा रात्रि 10:00। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10:00 FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत।

ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्रीटिप्स में जानकारी का विषय रहेगा पैशन फल की खेती। इंद्रधनुष कार्यक्रम में 6:15 पर शीर्षक होगा मंजिल। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस गान की 282वीं कड़ी। 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि FM 100.9 MHz पर कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय होगा स्वस्थ जीवन का संकल्प नशा मुक्ति। विशेषज्ञ होंगे इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स साउथ अंडमान के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर M.K. महतो। प्रस्तुतकर्ता होंगी जयशीला। पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फरीदा खानम, नूरजहां, पंकज उदास, जगजीत सिंह, गुलाम अली को सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा 9:00। पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ई गायत्री का कर्नाटक शैली में वीणा वादन आप सुन पाएंगे। 10:00। कुछ और फिल्मी गीतों का आनंद आप ले पाएंगे कार्यक्रम गीत गुंजन में कल दिन के 11:00। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत अतीत। कल दोपहर 12:00 आप तेलुगु कार्यक्रम सुनेंगे। मलयालम कार्यक्रम का समय होगा 12:30। एक बजकर 10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में मेहंदी हसन और तलत अजीज को सुन पाएंगे। दोपहर बाद 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम

जानकारी तत्पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक। 3:30 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30 पर।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम का समय रहेगा 4:45। शाम 5 बजे आप सुनेंगे तमिल कार्यक्रम तथा बांग्ला कार्यक्रम का समय होगा 5:30। शाम 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे मंजीत कौर से बातचीत होगी। बातचीत का विषय रहेगा पशुपालन व कृषि से आत्मनिर्भरता। 6:30 पे अंग्रेजी कार्यक्रम में आप सुनेंगे क्लाइमेट चेंज चैलेंज एंड सॉल्यूशन। वार्ताकार होंगी नेल्सन पॉल टोप्पो।

उर्मिला कुमार थलियाल की लिखी झलकी चूचू का मुरब्बा आप सुनेंगे 6:45 पर। 7:20 पर कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युववाणी कार्यक्रम का समय होगा 7:30। इसमें कार्यक्रम होगा भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम बातें मुलाकातें। रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत रोजगार समाचार व गौरव गान आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर।

0: इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती, 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10:00 FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
2: नमस्कार, भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक मिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
3: नमस्कार।

आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का प्रारूप जारी किया है। श्री विजयपुरम में 29 जून से 13 जुलाई तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश हज समिति ने हज 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस निदेशकों से इन पोर्टल पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को एक महान साहित्यकार बताया, जिनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। इस वर्ष के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र को प्रेरणा के सबसे चिरस्थायी स्रोतों में से एक बना दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रख्यात साहित्यकार और अग्रदूत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि अपनी अमर रचना आनंद मठ के माध्यम से बंकिम चंद्र ने मातृभूमि के प्रति आत्मसमर्पण, त्याग और राष्ट्र चेतना का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की रचना करके बंकिम चंद्र ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई शक्ति, प्रेरणा और एक आदर्शवादी आधार प्रदान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का प्रारूप जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी सेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% सेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई सेल्फ लाइफ से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सर्किट कोर्ट और हज आवेदन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम

वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के न्यायिक मामलों की सुनवाई के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का सर्किट बेंच 29 जून से 13 जुलाई तक पोर्टब्लेयर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुगतो मजुमदार और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय सर्किट कोर्ट में मामलों की सुनवाई करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश हज समिति ने सभी पात्र और इच्छुक तीर्थयात्रियों से हज 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 20 जुलाई मध्यरात्रि तक www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकते हैं। हज 2027 के दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण निदेशालय स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश हज समिति के अध्यक्ष कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए यह लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। मत्स्य पालन विभाग केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम मत्स्य पालन इनपुट की आपूर्ति आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं लागू कर रहा है। गैर जनजातीय श्रेणी के लिए 50% और जनजातीय श्रेणी के लिए 75% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को द्वीप समूह का मछुआरा या जनजाति, उनके पास पंजीकृत गैर मोटरीकृत या मोटरीकृत मछली पकड़ने वाली नाव, साथ ही वर्तमान वर्ष सहित लगातार 2 वर्षों का वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए वर्ष 2026-27 के दौरान आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं खरीदने के इच्छुक नगरपालिका और जनजातीय क्षेत्रों के मछुआरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन फॉर्म और विस्तृत नियम व शर्तें मत्स्य पालन निदेशालय, क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय और नजदीकी मत्स्य उपकेंद्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन 30 जून तक मत्स्य क्षेत्रीय कार्यालय या उपकेंद्र में जमा किए जा सकते हैं। दक्षिण अंडमान जिला मनरेगा के तहत अनुबंध के आधार पर 11 महीने की अवधि के लिए ग्राम रोजगार सेवक के 4 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को ₹14,000 का मानदेय दिया जाएगा। उम्मीदवार को 12वीं पास होना अनिवार्य है और उन्हें संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पद के लिए स्वराजद्वीप, शहीद द्वीप और लिटिल अंडमान के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन 14 जुलाई शाम 4 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ एसडीएम कार्यालय में जिला कार्यक्रम समन्वयक के पते पर जमा किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का प्रारूप जारी किया है। श्री विजयपुरम में 29 जून से 13 जुलाई तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश हज समिति ने हज 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मौसम मुख्यतः सूखा रहा। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष

चेतावनी नहीं है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज़रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर रविवार 28 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी उसी रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर एमवी कालीघाट रविवार 28 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान अगले दिन सोमवार 29 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल सवेरे 6 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा जलयान की वापसी रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा जलयान की वापसी कल ही 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉलीबॉय शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान रविवार 28 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इस बीच ये जलयान शहीद द्वीप से 1 बजे स्वराज द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी कल ही 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस बीच ये जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी कल ही शाम 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बारेटांग कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान रविवार 28 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। 7:20 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं आशिक बनाया आपने फिल्म से, जिसे गाया है हिमेश रेशमिया और अहीर, धुन दिया है हिमेश रेशमिया और लिखा है समीर ने।

सोनू निगम और शान की आवाज़ों में आइए अब सुनते हैं एक खिलाड़ी एक हसीना फिल्म का गीत। गीत रचना शान और मयूर पुरी की तथा संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लताराज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 26 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा अवैध तस्करी को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। नशीली दवाओं का सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं, परिवार टूटते हैं और अपराधों में वृद्धि होती है। विशेष रूप से युवाओं को नशे की लत से बचाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे देश का भविष्य हैं। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, जो समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बनती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकारों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों को मिलकर कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही आज के दिन की कुछ खास बातें, और अब आप सभी को इंतजार होगा आज के कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आज इस माह का चौथा शुक्रवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने और अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए कॉल करें इन नंबरों पर 2325 और 2325 हमारा STD कोड है 03192। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो फ्रेंड्स।
1: जी दीदी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: जी दीदी, मैं ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: जी रामबाबू शर्मा जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपसे जानते हैं।
1: जी दीदी, बहुत बढ़िया हूँ और बोनी के काम में व्यस्त हो गए हैं अभी।
0: अच्छा अच्छा जी।
1: हाँ जी, बारिश हो गई है, बिल्कुल बहुत अच्छी बारिश हुई है और बोनी चल रही है, सारे किसान खुश हैं इस समय और व्यस्त भी हैं।
0: अरे वाह अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे इतना सुंदर माहौल है। तो इसी सुंदर से माहौल को और भी सुंदर बनाने के लिए आप कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे?
1: जी दीदी, बोनी चल रही है तो एक धरती फिल्म में गाना है
0: जी,
1: ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
0: अरे वाह अरे वाह, और आप ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी दीदी, मेरे मित्र सुन रहे हैं केसव सिंह राजपूत जी, गजराज सिंह लोधी जी, भगवान सिंह परमार जी, भारत सिंह अहरवाल जी
0: जी,
1: और मांगीलाल चंदेल जी सुन रहे हैं, और पूनम जी सुन रही है, पूर्णिमा जी सुन रही है विजयपुरम से।
0: जी
1: जी दीदी, और आपके लिए और सभी श्रोताओं, सुनने वाले के लिए, सभी श्रोताओं के लिए।
0: जी तो ठीक है रामबाबू शर्मा जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं जो गीत अभी हम आपको भिजवाएंगे मध्य प्रदेश, उससे आपकी खुशी और भी दोगुनी हो जाएगी।

0: हाँ जी नमस्कार मैडम।
1: जी नमस्कार, मेरी किनसे बात हो रही है?
0: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
1: जी, मध्य प्रदेश से हैं आप, तो वहाँ का मौसम शायद अभी बारिश हो रही है।
0: मैडम जी बिल्कुल बारिश की
1: जी
0: शुरुआत हो
1: जी
0: चुकी है। हाँ
1: जी
0: जी
1: जी जी
0: बारिश की शुरुआत हो चुकी है और हम काफी दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे। अब मौसम बिल्कुल अनुरूप हो गया है, मानसून आ चुका है।
1: जी, कितना खुशहाल मौसम और इतना सुंदर दृश्य होगा वहां पर।
0: बिल्कुल
1: वैसे
0: मैडम
1: जी,
0: जी,
1: और मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी जगह है हमें बताइए जहां हम घूमने जा सकते हैं,
0: मैडम
1: पर्यटकों
0: जी
1: का आना
0: खास
1: जाना होता है।
0: तो ये पचमढ़ी है भोपाल के पास में,
1: जी
0: और यहाँ पर भी मनोरम दृश्य रहता है वहाँ पर पहाड़ियों का।
1: अरे वाह, अरे
0: और
1: वाह।
0: उज्जैन भी महाकालेश्वर जी की
1: जी
0: नगरी, ये भी एक पर्यटन स्थल है।
1: जी जी जी
0: जी मैडम
1: जी चलिए, बहुत अच्छा। वैसे आपका दिन कैसे बीत रहा है?
0: बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं,
1: अरे
0: दिन भी अच्छा बीतता है। हेयर कटिंग
1: वाह
0: सैलून का बिजनेस है तो काम करते रहते हैं और आपके
1: जी,
0: प्रोग्रामों का आनंद लेते रहते हैं।
1: अरे वाह, अरे वाह। अब हम आपसे जानते हैं कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
0: ये फिल्म का नाम है पेंटर बाबू,
1: जी
0: इसमें गाना है हमको ले चले यारा ठंडी लहर के किनारे।
1: जी और आप ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: ये भगवान सिंह परमार जी हैं और सुनील झा जी हैं भोपाल से, और राम बाबू मालवीय जी हैं और प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं। ये सभी मित्र हैं और हमारा हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के मित्र।
1: जी, तो ठीक है, आइए आपको और आपके सभी दोस्तों को सुनवाते हैं आपका ये मनपसंद गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, मेरी किनसे बात हो रही है?
1: हमारा नाम जो है प्रेमदास बाबा जी, जिला महोबा यूपी उत्तर प्रदेश।
0: जी जी जी कैसे हैं आप? सबसे पहले आपसे जानते हैं।
1: हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन गर्मी भयानक पड़ रही। गर्मी?
0: अच्छा, उत्तर प्रदेश में गर्मी हो रही है।
1: अभी कोई बारिश नहीं है, पर गर्मी है भयानक। यानी टेम्परेचर 45-46, 48 तक बांधा में तो 48 तक है।
0: अरे अरे, तो मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है। तो वैसे आमतौर पर आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं?
1: हम गर्मी से बचे अंदर रात और पानी ज्यादा पिए, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पिए। तो अगर बाहर निकलें तो गमछा वगैरह डाल के
0: जी जी
1: चश्मा, धूप वाला चश्मा लगा लें और बाहर बस कम निकलें।
0: जी जी जी जी जी चलिए
1: और गैस के नीचे बैठ गए छाया में सुबह से।
0: जी जी बिल्कुल, इन गर्मियों के मौसम में अपना ध्यान रखना अति आवश्यक है, जो आप कर रहे हैं अच्छी बात है। तो वैसे अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गाना जीने की राह है
0: जी,
1: फिल्म का नाम जीने की राह है
0: जी, और गीत के बोल?
1: बोल बता रहा, चंदा को ढूंढने तारे निकल पड़े, गलियों में किस्मत के मारे निकल पड़े।
0: अरे वाह, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना। तो ठीक है, कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे आपका ये मनपसंद गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, मेरी किनसे बात हो रही है?
1: चाकुलिया, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल से गणेश दास।
0: जी गणेश दास जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपसे जानते हैं।
1: बहुत अच्छे हैं। माँ बताइए, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी ठीक हूँ। वैसे वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम का जब देखिए, अभी गर्मी का समय है तो
0: जी
1: भारत में तो जानते हैं कि हर जगह गर्मी है, तो हमारे पश्चिम बंगाल में भी जो है गर्मी है।
0: गर्मी हो रही है। जी।
1: जी, और हम जो किसान होने के नाते ऐसा है कि हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं अगर बारिश हो जाए तो अच्छा हो, ताकि
0: फसल।
1: कैसे हो।
0: जी। वैसे इन दिनों आपने किन फसलों की खेती की है?
1: नहीं, अभी हाल फिलहाल जो है मक्का काट के धान भी काटे हैं और फिर
0: अरे
1: धान
0: वाह,
1: लगाने की
0: अरे
1: तैयारियां हो रही है।
0: वाह, अरे वाह, चलिए बहुत खूब बहुत खूब। वैसे आपका दिन कैसा बीत रहा है? आप अभी भी खेत में हैं?
1: नहीं, ऐसा है कि मैं अभी हाल फिलहाल फ्री हूँ, तो कहा जाता है किसान के साथ साथ मैं एक करियाना का दुकान भी रखा छोटा सा।
0: अरे वाह, अरे वाह। जी।
1: जी,
0: चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आपसे जानते हैं कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है लहू के दो रंग
0: जी
1: और गाने के बोल है, हसीनो तो आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। ये गाना
0: अरे वाह, अरे वाह, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना। और आप ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जैसे कि आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ
0: जी
1: और पूनम है और राधा रानी खंडेलवाल है और बाकी जो श्रोता सुन रहे हैं सभी दोस्तों के साथ।
0: जी तो ठीक है, कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे आपका ये मन चाहा गीत।

0: जी मेरा नाम है सप्तमी विष्णु कुंडू, मैं शादीपुर विजयपुरम से बोल रही हूँ।
1: अच्छा सप्तमी जी, कैसी हैं आप? सबसे पहले आपसे जानते हैं।
0: मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि रेडियो के थ्रू से जो मेरा एक नया नया मतलब परिचय होता है और मेरा नया पहचान खुद से होता है, उस सोच के मुझे बहुत बहुत खुश, मतलब कितना मैं अपना जुबा से बयान नहीं कर सकती। मैं सच्ची में बोल रही हूँ, मैं जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है, क्योंकि आकाशवाणी एक है जो मुझे अपना पहचान खुद बनाने का मौका दिया।
1: अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छा लगा कि आपको आकाशवाणी के प्रति इतना प्रेम है। वैसे आप करती क्या हैं?
0: एक तो मैं हाउसवाइफ थी, लेकिन अभी मैं फिलहाल एक बिजनेस वुमन हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड का एक बिजनेस है, तो उनका जाने के बाद उसका पूरा ख्याल मुझे रखना पड़ रहा है। और मैं घर से भी करती हूँ, फिर कभी कभी मुझे शॉप में भी जाना पड़ता है। और मेरा एक बेटी है जो अभी BSc सेकेंड ईयर में है।
1: अरे वाह, अरे वाह, तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप इतनी कड़ी मेहनत करती हैं, अपने घर को अकेले संभालती हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आकाशवाणी की तरफ से। कामना करते
0: थैंक
1: हैं
0: यू।
1: कि आप जिंदगी में ऐसे ही खुश रहें, आगे बढ़ते रहें।
0: और मुझे भी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा एक नया पहचान बन गया,
1: अरे
0: जो
1: वाह।
0: ये सप्तमी जी है, मेरे सप्तमी है जो विजयपुरम से हमेशा बात करते हैं। बीच में एक मेरे साथ एक मतलब बहुत अच्छा खुशी का बात हुआ, जो मैं एक जगह में सुपिचार के लिए बोली थी, तो एक मैम है जो उनका बहुत एज है, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात शब्द बोला जो मुझे अगर दोबारा जन्म मिले तो मैं अपने सप्तमी जी का गोद से जन्म लेना चाहती हूँ, क्योंकि उनको मैं माँ का दरवाजा देती हूँ, क्योंकि जब भी वो कुछ भी बोले बा कुछ बोलना चाहते हैं, इस तरह लगता है जैसे सच्ची में दिल से आवाज निकलता है। तो वो जो बात बोला उन्होंने, वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और
1: अरे
0: मैं
1: वाह,
0: जिंदगी उनको चरण में मैं अपना खुद को नमन करती हूँ, जो उन्होंने मुझे ये वादा दिया, जो उन्होंने बोला जो दोबारा जन्म होने से वो मेरी ही गोद से लेना जन्म
1: अरे
0: लेना
1: वाह,
0: चाहते हैं।
1: सच में
0: तो ये
1: आपकी
0: बहुत बड़ी
1: बातों
0: बात
1: में
0: है,
1: ही आपकी खुशी झलक रही है, और हमें भी बहुत खुशी हुई है जानकर आपने हमारे श्रोताओं के साथ, आकाशवाणी परिवार के साथ अपना ये खुशनुमा पल शेयर किया, बहुत अच्छा लगा।
0: और वो सिर्फ मुझे मिला ये विजयपुरम आकाशवाणी से, क्योंकि मुझे बहुत बार इंटरव्यू करने का मौका मिला, और जो भी मुझे सुनते कोई तो मुझे वही एक पहचान मिल गया, जो आप सप्तमी जी है जो आकाशवाणी से हमेशा आपका आवाज सुनाई देती।
1: जी, बहुत अच्छा लगा, आप जैसे श्रोता हैं हमारे साथ में। तो वैसे आपसे काफ़ी बातें हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अब आपसे
0: मुझे भी बहुत
1: जानते
0: अच्छा लगा जो आपने मुझे मौका दिया बात करने के लिए।
1: जी, तो अब आपसे जानते हैं कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे सप्तमी जी?
0: आज मैं सुनना चाहूंगी, फिल्म का नाम है आंधी,
1: जी
0: और इसका एक गाने का बोल है, तेरे बिना जिंदगी में शुक्रिया कोई नहीं, लेकिन उसका बंगाली में जो गाना है जो ID बर्मन जी ने गाया, और वो गाना आशा जी ने गाया, तो
1: जी
0: मैं अगर आपका इजाजत हो तो उसका दो लाइन में गुनगुनाऊंगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: और मैं बंगाली में ही गुनगुनाऊंगी।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।

0: सुन रहा है।
1: अरे वाह, आपकी आवाज इतनी मधुर है, मैं खो गई आपकी आवाज में। बहुत सुंदर गाती हैं आप। बहुत प्यारी आवाज है आपकी। तो
0: और
1: चल
0: आपको मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ जो आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत हमेशा आप लोग दिल में है, लेकिन शुक्रिया अदा करने के लिए ये शब्द भी बहुत छोटा है,
1: नहीं
0: लेकिन
1: नहीं ये
0: आप
1: हमारा सौभाग्य है कि
0: लोग
1: आप हमसे जुड़ती हैं।
0: आप लोग हमेशा हम लोग दिलो दिमाग और सांसों में बसे हैं जो आकाशवाणी का
1: आपका
0: रजिस्टर है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेम देने के लिए। तो चलिए,
0: थैंक
1: आपसे
0: यू मैम,
1: बातें करके
0: थैंक यू।
1: बहुत बहुत खुशी हुई, और अब हम आपको सुनवाते हैं आपका ये मन चाहा गीत।

0: तो दोस्तों, इसी के साथ युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: श्रोताओं, अभी आप युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं वो कौन थी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, धुन तैयार किया है मदन मोहन और लिखा है राजा मोहड़ी अली खान ने।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए मासूम फिल्म का ये गीत। गीत रचना गुलजार की तथा स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

मुकेश की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं आनंद फिल्म का ये गीत। योगेश गौड़ के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है साहिल चौधरी ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं और माइलेज भी बढ़िया है। 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
4: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। कार्यक्रम में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा एवं राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम आपकी कसम।

गाइड, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। शब्द रचना शैलेंद्र की तथा संगीत में पिरोया है SD बर्मन ने।

अनजान की रचना में अब सुनिए लता मंगेशकर को, फर्स्ट लव स्टोरी फिल्म से संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं रोजगार समाचार व गौरवगान। आइए पहले सुनते हैं रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के 7 पदों को प्रतिनियुक्त ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रण किए जाते हैं। वेतन केवल 11 ग्रुप ए

राजपत्रित गैर मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। लाभार्थियों को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करने होगी। मूल विभाग कैडर में समान पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक्स के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक्स के केवल 7 में नियमित नियुक्ति के कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की पार्ट ए पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 66 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा डिजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट पिछले 5 वर्षों की APAR या ACR प्राप्तियाँ भी लगनी होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। ये था रोजगार समाचार। अब सुनिए गौरव गान।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ. इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ईबीएस और ईएसपी हैं. और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी सीएनजी में. बाय ऑफर्स अप टू 80,000.
3: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है. शर्तें लागू.

श्रोताओं, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति

0: उपयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाही

0: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला

0: दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देशभर में आशूराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्वकप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign.

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रश्मि। दोस्तों, अगर आप भी हमारे ज़रिए आपके मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए, टाइप कीजिए फिल्म का नाम, गीत के बोल, आपका नाम और पता, और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। नंबर है 9474

2 3 4 0 0 0। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9 4 7 4 2 3 4 0 0 0। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं पद्मा टॉकीज मध्य प्रदेश नेपानगर से। सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, सुरभि अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह के इस संदेश के साथ ये सुनना चाहते हैं मंजिल फिल्म का ये गीत।

संबलपुर कांकेर से हमें फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने संदेश भेजा है। ये सुनना चाहते हैं कच्चे धागे फिल्म का ये गीत।

सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने हमें संदेश भेजा है। ये सुनना चाहते हैं लोफर फिल्म का ये।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मौसम मुख्यतः सूखा रहा। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा में अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:28 और 40 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की पहली स्थानीय प्रसारण सेवा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।